मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, आज मंगलवार शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि तदनुसार 7 जुलाई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे।

0: यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूदेवी भगवती भारती का वंदन समूह स्वर में सुनते हैं। धर्मपाल अकीरन का लिखा देशगान

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजों में।

0: हमारा उद्देश्य हमारे कर्मों के पीछे छिपा वास्तविक भाव। कोई भी कार्य केवल उसके परिणाम से महान नहीं बनता, बल्कि उसे करने की नीयत ही उसकी असली पहचान बनती है। अच्छी नीयत साधारण से साधारण व्यक्ति को भी सम्मान दिला सकती है, जबकि बुरी नीयत बड़े से बड़े व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी नीयत वैसी नियति। नीयत केवल दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमारे चरित्र, संस्कार और सोच का भी दर्पण होती है। जिस व्यक्ति की नीयत साफ होती है, उसके व्यवहार में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास स्वतः दिखाई देता है। ऐसे लोग दूसरों का भला सोचते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यही कारण है कि समाज में ऐसे लोगों का सम्मान सदैव बना रहता है। आज के समय में अक्सर लोग किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पद, धन या बाहरी व्यक्तित्व से कर लेते हैं, जबकि वास्तविक पहचान उसकी नीयत से होती है। यदि किसी के पास अपार धन संपत्ति हो, लेकिन उसकी नीयत दूसरों का हित करने की हो, तो वह कभी भी सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी यदि नेक नीयत रखता है, तो वह लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लेता है। अच्छी नीयत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह विश्वास पैदा करती है। परिवार हो, मित्रता हो या कार्यस्थल, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और विश्वास तभी बनता है जब नीयत साफ हो। जिस व्यक्ति की बातों और कार्यों में ईमानदारी होती है, लोग उस पर बिना संकोच भरोसा करते हैं। इसके विपरीत यदि नीयत में छल, स्वार्थ या धोखा हो, तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे उनकी नेक नीयत रही है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का विकास नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा को बनाया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मानपूर्वक लिया जाता है। किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसके नागरिकों की नीयत ईमानदार और सकारात्मक हो। कई बार हमें जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं जहां कोई देख नहीं रहा होता, और वहीं हमारी नीयत की वास्तविक परीक्षा होती है। यदि हम केवल लोगों के सामने अच्छे बने और अकेले में गलत कार्य करें, तो वह सच्ची अच्छाई नहीं है। सच्ची नीयत वही है जो हर परिस्थिति में समान रहे। ईमानदारी केवल दूसरों को दिखाने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं के चरित्र का हिस्सा होनी चाहिए। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में सफलता की दौड़ ने कई लोगों को केवल परिणामों तक सीमित कर दिया है। कुछ लोग सफलता पाने के लिए गलत रास्ते अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन ऐसी सफलता क्षणिक होती है। अच्छे उद्देश्य और साफ नीयत से प्राप्त सफलता ही स्थायी होती है और मन को सच्चा संतोष देती है। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छी नीयत का महत्व भी सिखाना चाहिए। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक होगी, उसका उद्देश्य नेक होगा और उसके कर्म ईमानदार होंगे, तभी वह एक अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बन सकेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि नीयत वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे व्यक्तित्व को दिशा देती है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी नीयत से अर्जित सम्मान जीवन भर शांत रहता है। इसलिए हमें सदैव अपने मन को स्वच्छ, विचारों को सकारात्मक और उद्देश्य को नेक रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत और उसके कर्मों से होती है। यही जीवन की सच्ची सफलता और सार्थकता है।
1: धरती प्रिया के वाचन स्वर में आपने सुना नियत विषय का लेख। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन समूह स्वरों में। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

0: कंचन चत्रा जी और साथियों की आवाज़ों में राम प्यारे रसिक की लिखी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। धरती प्रिया के वाचन स्वर में सुनते हैं नियत विषय का लेख।
1: मनुष्य के जीवन में अनेक गुणों का महत्व होता है, लेकिन यदि किसी एक गुण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है तो वह है नियत। नियत अर्थात हमारे मन की भावना।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:00

0: 45 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात।
1: किसान भाइयों, मक्का विश्व में आर्थिक रूप से तथा पशुओं के लिए चारा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। यह विश्व में सबसे अधिक उपज क्षमता वाली अनाज, इसीलिए इस फसल को अनाज की रानी कहते हैं। मक्का उत्पादन सभी राज्यों में किया जाता है। 85% मक्का का उत्पादन खाने के उद्देश्य से किया जाता है। मक्का से रोटी तथा कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। लोगों द्वारा मक्के को भूनकर बड़े चाव से खाया जाता है। मक्के से बच्चों के लिए प्रसिद्ध पॉपकॉर्न बनाया जाता है। मक्का मुर्गी, सुअर तथा अन्य जानवरों के लिए भी भोजन का अच्छा स्रोत है। मक्के में 10% प्रोटीन, 4% तेल तथा 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का में विटामिन ए, बी और विटामिन ई पाया जाता है। मक्के के अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस तथा बढ़वार के लिए 32 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। जल भराव मक्का के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मक्का के लिए जल निकास विशेषकर खरीफ मौसम में बहुत ही जरूरी है। मक्का को 5.50 से 7.50 पीएच तक उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, मक्का के लिए उन्नतशील किस्में जैसे गंगा 01, गंगा 101 तथा रंजीत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। संकुल किस्मों में अम्र, विजय, किसान, सोना, विक्रम तथा ज्वाहर है। सिंचित क्षेत्र में मक्का के साथ मिश्रित फसल के रूप में कई फसल लाभदायक हैं, जैसे गेहूं, आलू, तोरिया, गन्ना, बरसीम तथा चना इत्यादि। मक्का के कुछ महत्वपूर्ण फसल चक्र होते हैं, जैसे मक्का आलू एक वर्षीय फसल चक्र, मक्का गेहूं एक वर्षीय फसल चक्र, मक्का तोरिया गन्ना द्विवर्षीय फसल चक्र, मक्का गेहूं ज्वार गन्ना त्रिवर्षीय फसल चक्र। किसान भाइयों, मक्का की तैयारी हेतु मक्का के लिए दानेदार, अच्छी हवा संचार वाली, नम तथा खरपतवार रहित खेत होनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए, जिससे 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी गीला पड़ जाए, जिसके बाद से 2-3 बार डिस्क हीरो से जुताई करना चाहिए। मक्का के अधिकतम उत्पादन के लिए पौधों की संख्या 60 से 65 हजार होनी चाहिए। मक्का में पौधों की संख्या नियत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मक्का खाली स्थान को भर नहीं पाता, जिसमें कंसे निकलने की प्रवृत्ति नहीं होती। मक्का में पौधे से पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पंक्ति 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। हाइब्रिड मक्का हेतु बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम तथा संकुल मक्का हेतु 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर होना चाहिए। जहां सिंचाई की सुविधा हो, वहां मक्का मानसून आने के 2 हफ्ते पहले लगा देना चाहिए, ताकि वर्षा के समय जड़ गहराई तक पहुंच सके और पौधों को पूरा सहारा दे सके। गर्मी में मक्का मार्च अप्रैल में लगाई जाती है। मक्के के लिए खाद एवं उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मक्का के खेत में डालना चाहिए। अनुशंसा के अनुसार संकर मक्का के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मिट्टी परीक्षण में जहां जस्ते की कमी हो, उन खेतों में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का छिड़काव वर्षा के पूर्व खेतों में मिला देना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा अंकुरण के लगभग 1 माह बाद देना उपयुक्त रहता है। मक्का फसल पानी की अधिकता तथा नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। मक्के के फसल में पानी का भराव कभी नहीं होना चाहिए। माझा निकलने के समय मक्का को पानी अवश्य ही देना चाहिए। खरीफ मौसम में पर्याप्त वर्षा होने के कारण खरपतवार की संख्या ज्यादा होती है। मक्के के फसल में मक्का लगाने पूर्व इंट्राजीन या सीमाजीन की मात्रा 1 से 1.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हल्की मृदा में तथा 1 से 1.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भारी मृदा में 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल बोने के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। बीज बोने के 15 से 20 दिन के बाद खेत में निंदाई गुड़ाई करने से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। खेती की उन्नत तरीके अपनाने से संकर किस्मों में 50 से 60 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर तथा संकुल किस्मों में 45 से 50 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। वर्षा आधारित फसल में संकर किस्मों से 20 से 25 क्विंटल तथा संकुल किस्मों से 15 से 20 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो इस तरह किसान भाइयों मक्का की उन्नत खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। मक्के

की उन्नत खेती पर आपने सुनी सामयिक जानकारी। आप सुन रहे थे कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

छत्तीसगढ़ी भाषा में समन्वित साहित्य कार्यक्रम मूर भुइयां आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे बच्चों की परवरिश में अनुशासन विषयक बातचीत, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित आईना क्रम, घर आंगन मेल और गीत संगीत।

हेलो किसान वाणी सजीव का प्रसारण समय है शाम 7:30। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक शांडिल्य, विषय वस्तु विशेषक अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर। आज चर्चा के मुख्य विषय होंगे खरीफ की प्रमुख फसलें धान और अरहर की उन्नत उत्पादन तकनीक की विधियाँ और उन्नत बीजों के प्रकार और बीज उत्पादन तकनीक की विधियाँ। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श

सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि के 8 बजे। दिन के 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है मध्याह्न के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन पाएंगे शाम के 5 बजे।

तो श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सादरी जलसा गीत। गायक कलाकार हैं अलिमा तिग्गा और साथी।

गायक कलाकार श्रीलाल और साथियों के स्वर में सरगुजिया बायर गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चंदन दास की आवाज़ में नसीर काजमी की लिखी नज्म के साथ।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आप सुनते हैं नसीम अजमेरी की लिखी गजल, भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में।

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में नसीम अजमेरी की लिखी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में मैं हूँ राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन सादर नमस्कार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5:00 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहाँ हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म अनुपमा का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आजमी की शब्द रचना, हेमंत कुमार का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म अनुपमा का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423060।

0: पर एक बार फिर 0777423060।
1: समाचार मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोड़ी डीह में लेटरल एंट्री से प्रवेश का सुनहरा अवसर। कक्षा 7वीं एवं 11वीं की रिक्त सीटों पर आवेदन शुरू। 17 जुलाई को होगी चयन परीक्षा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के अधीन संचालित पीएम श्री एकलव्य आदर्श सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय पोड़ी डी विकासखंड खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से कक्षा 7वीं एवं कक्षा 11वीं के रिक्त सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक एवं पात्र छात्र छात्राएं निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन कर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जारी सूचना के अनुसार विद्यालय में कक्षा 7वीं में कुल 3 रिक्त सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें एक बालक एवं 2 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कक्षा 11वीं में कुल 4 रिक्त सीटें हैं, जिनमें 3 बालक एवं 1 बालिका का चयन किया जाएगा। कक्षा 7वीं में प्रवेश चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जबकि कक्षा 11वीं में प्रवेश पर कक्षा 10वीं के प्राप्तांक एवं मेरिट के आधार पर होगा। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म नील कमल का गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, रवि का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म नील कमल का गीत। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। कार्यक्रम की अगली खबर जनसंपर्क अंबिकापुर से। 8 जुलाई को होगी दिशा समिति की बैठक। दिशा समिति की बैठक 8 जुलाई 2026 को समय 11 बजे से सरगुजा सांसद की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई है। उक्त बैठक में सर्व संबंधितों को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने को कहा गया है। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में फिल्म सुजाता का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा नगमा, सचिन देव बर्मन का संगीत निर्देशन।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, 9 जुलाई तक कर सकते हैं दावा आपत्ति। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना वर्ष 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा केंद्र प्रयास आवासीय विद्यालय घघरी अंबिकापुर में किया गया था, जिसका परिणाम 6 जुलाई 2026 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.sarguja.nic.in पर देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम में आपत्ति होने पर परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम से संबंधित दावा आपत्ति 9 जुलाई 2026 को सायं 3 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म CID का गीत। शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत निर्देशन OP नैयर का।

मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा। जनपद पंचायत अंबिकापुर के सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आज। जनपद पंचायत अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि 7 जुलाई 2026 को जनपद पंचायत अंबिकापुर के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 11:30 से एवं सामान्य सभा की बैठक दोपहर 1 बजे से कार्यालय जनपद पंचायत अंबिकापुर के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। उन्होंने बैठक में सर्व संबंधितों को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का आखिरी गीत फिल्म पहचान से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत नीरज का, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

0: फिल्म पहचान के गीत के साथ। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकार करें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह

0: और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइक

0: कल्चर का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6th स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला

0: जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory.

0: श्रीमती मधु तिवारी ले। श्रोता साथी हो, आवा सबसे पहली आप मन सुनवा थावन एक वार्ता जेकर विषय है छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार वार्ताकार हावें डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा।
1: मोर भुइया कार्यक्रम हा छत्तीसगढ़ के सबो लोक विधा ला जन जन मा बगराय के बहुत सुघर काम करत है। आज बात करबो हम खेत किसान और साहित्य। खेत किसान और साहित्य तीनों हमर संस्कार उन्नति परंपरा संस्कृति के धुरी होते। तीनों एक दूसर के पूरक होते। खेत हावय त किसान है, किसान है त खेत है, और खेत और किसान है त साहित्य हावय। खेत हमर जिंदगी ल जिए के आसरा देते, अन्न उपजा के देते। जिंदगी है त सृष्टि है, अगर खेत खत्म त जिंदगी खत्म, सृष्टि खत्म, ये परम सत्य हावय। किसान अपन जांगा टोर के खेती करते, किसिम किसिम के अन्न उपजाते, खुद जीते और दूसर ल जिए के भरोसा देते। अब गोट बात छत्तीसगढ़ के खेती के करतन, तो पूरा देश में छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कही के सम्मान दिए जाते। हमर माटी उपजाऊ हावय, हमर नदिया जलवायु हमर अनुसार हेवय, हमर किसान मन मेहनती है, यही हमर राज के पहचान हावय। खेती हमर जीवन के मुख्य स्रोत है, हमर आर्थिक आधार हावय। हमर खेत हमर माटी लोक जीवन के रक्षक है, त लोक संस्कृति और लोक गीत के जन्मदाता घलो हावय। नवा रचनाकार जब भी गीत लिखते तो काखर ऊपर लिखते, अपन खेत अपन माटी खेत खार नरवा नदिया रुख राई पशु पक्षी अपन गांव ऊपर लिखते। ओला प्रेरणा कहाँ ले मिलते, खेत ले माटी ले। हमर खेत केवल अन्न ही नहीं उपजा रहे, बल्कि लोकगीत कहावत कहनी संवेदना और संस्कार भी ल जन्म देते। और किसान, किसान हमर धरती के भगवान है। कैसे किसान अपन मेहनत साहस धैर्य संस्कार अपन परंपरा और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करते, तभे तो भगवान के दर्जा दिए गए हावे। और तभे तो कवि गाते ना कि धन धन रे मोर किसान, मैं तो तोला जाने भैया, मैं तो तोला माने भैया, ए भुइया के भगवान, धन धन रे मोर किसान। खेती में चार मासी काम नहीं हुए, बल्कि बारह मासी काम होते। यही मेरन काम करत करत लोक भाव लोक गीत की उत्पत्ति होते। खेत में काम करत करत माटी व सम्मान उत्पन्न हो जाते, ओकर संग मया हो जाते। तभे तो जन कवि लिखते कि मोर रग रग मा हे दया मया, मैं महाभारत के गीतायाँ, मोर हाड़ा बजुर बरोबर है, मैं वीर दधीच दानी औरे, मैं छत्तीसगढ़ के माटियाँ, मैं छत्तीसगढ़ के माटियाँ। और जनमन से अपील घलो करते कि मोर राजा दुलरवा बेटा, तय नंगरिहा बन जाबे, पानी पियाए बर धरती ला तय बदरिया बन जाबे, और हरियर सबके मन ल रखे बर लहरिया बन जाबे, तय नगरिया बन जाबे। छत्तीसगढ़ के किसान मन धान के खेती ज़्यादा करते, फिर अब गहूँ दलहन तिलहन मक्का और साग सालन पशुपालन मछली पालन कीट पालन के भी खेती करत हावय। ये सब खेती वर्षा के आधार में होते, तेकरे कारण किसान के पूरा जिंदगी प्रकृति से गहराई से जुड़े होते। खेत के जतनई से लेके बिजहा बोवई पौधा के जागना तैयार होना ओकर कटई मिसई जतनई ये सबो चरण ना लोक परब कस होते। यही काम बूता के बखत में हमर लोकगीत के राजा ददरिया के जन्म होते। धान बोवई खेत जोताई निंदई पानी पलोई दवई छींचत धान लुवई मिसई बेरा में मन के भाव ह जुबान में गीत के रूप में आ जाते। ए बखत बेरा के भावला कवि मन अपन अपन अनुसार बहुत सुंदर लिखे पढ़े हावय। कुछ मैं आप मन ला सुनात हूँ कि आगू नगरिहा के बैला हावय लाल, आगू नगरिहा के बैला हावय लाल, ज़्यादा मया झन करबे हो जाही जी के काल। तो दूसर कवि लिखते कि बटकी में बासी और चुटकी में नून, मैं गावत हूँ ददरिया तय कान दे के सुन। तो तीसरैया लिखते कि बागे बगीचा दिखे ल हरियर, झुलुप वाला नहीं दिखे बदे हो नरियर। ते झनऊ लिखते कि पीपर के पाना डोलत नहीं है, का होगे टूरी है बोलत नहीं है। ऐसना सब लोकगीत के जन्म खेत कार में होते।

छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कोती ले। श्रोता साथी हो, आज के कार्यक्रम में आप मन सुनवात हन छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार ए विषय में वार्ता और वार्ताकार हमें डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा। नोनी के पाख ये कहानी आप मन सुनिया श्री शेष नारायण गुप्ता ले। और कार्यक्रम के आखिर में आप मन ला सुनवाबो कविता पाठ

प्रकृति सुंदर होते, ओकर सौंदर्य दर्शनी और पूजनी होते। तेखरे से तीर किसान किसानिन के ददरिया मा जुवानी, प्रेम, प्यार, सिगार, योग वियोग के वर्णन होते। यही अर्थ तो साहित्य है, जेहर मन के भावला खोल के बयान कर देते, वही तो साहित्य है। और खेत के ऊपर कथा कहानी तक लिखे गए हैं। हमार छत्तीसगढ़ में खेत ल केवल अन्न उपजाए के साधन नहीं माने जाए, बल्कि खेत जिंदगी, मेहनत, धीरज, आशा, संस्कृति, संस्कार, उपहार के प्रतीक माने जाते। तो वहीं किसान के मेहनत, सरलता, सहजता, दया, विनम्रता और प्रकृति से लगाव, सम्मान, मानवीय संवेदना से भरे साहित्य के उत्पत्ति कर देते। एकरे सेतिर यहाँ के लोकगीत, कथा कहानी, कविता में खेती, हरियाली, माटी, नरवा नदिया और किसान के जांगा टोर मेहनत के जम के वर्णन होते। गीत मनमा जीवंत चित्रण मिलते। खेती बर पानी ला मोती के समान माने गए हैं। तभी तो जब बादल उमड़ घुमड़ के बरसते तो कवि कही थे, झिमिर झिमिर बरसे पानी, देखो रे संगी देखो रे साथी, मोती झरे कपड़ा छानी, झिमिर झिमिर बरसे पानी। और ये भी कही थे कि घानी मुनी घोर दे, पानी दमोर दे, और छत्तीसगढ़ भुइया ला दूध दही में बोर दे। छत्तीसगढ़ के साहित्य किसान और ओखर गांव के जीवन शैली के सजीव प्रकाशन करते, जस के तस बयान करते। किसान के संघर्ष, जुझारूपनला अपन लेखन में प्रमुख स्थान लेखक मन दिए हावें। स्वर्गीय हरि ठाकुर, लक्ष्मण मस्तूरिया, पवन दीवान, कोदूराम दलित, पालेश्वर शर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी, नारायण लाल परमार, नरेंद्र देव वर्मा, रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर शर्मा, पी सी लाल यादव, दानेश्वर शर्मा, संतोष कश्यप जैसे मूर्धन्य साहित्यकार मन खेती किसानी के सुख दुखला प्रमुखता से अपन रचना में उकेरे हावे। लोकमंच के कलाकार मन गांव के गवईपनला लोक नृत्य, नाटक के माध्यम से जन जन तक पहुँचाए हावे। त नाचा कलाकार मन गांव के रहैया मन के पीराला व्यंग्य शैली में उजागर करे हावे। छत्तीसगढ़ के किसान की जिंदगी खुशहाल ही नहीं रहे, कभू कभू दुख भरे होते। जब पानी नहीं गिरे तो मुड़ धर के बैठ जाते, तब कवि के कलम चलते कि लीम के डंगाली चढ़े है करेला के नार, लीम के डंगाली चढ़े है करेला के नार, ठगवा कस पानी है ठगे है मुड़ धर बैठे किसान, ए विधाता गमोर कैसे बचाबो परान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो परान। दूसरा तरफ किसान के सिधवापन और ओकर शोषण ऊपर घलो कवि मन चुप नहीं रहे और मुखर होके बोलते कि नून बासी रोटी खाके, लहू पसीना बहा के, गरीब कमैया कहाए, तोर कमाई में बन गए चारों धाम, अढ़ा मोर किसान। रोज ओकर भाषण सुन के सोचे तय भोला राम, तोर अड़बड़ है मान, तय जिताए वो बन गए भगवान, अढ़ा मोर किसान, अढ़ा मोर किसान। आप सब जाना था कि लॉकडाउन के बखत में सरी देश ला भात दार कौन परोसिस, कौन पुरोइस, हमर किसान और केवल किसान। सरी देश के मनखे मन के जिंदगी के बचोइया हमर किसान, हमर भगवान है। उनकर बर न तो पटाखा फूटिस न ताली बजिस, तभो ले मुड़ी नवा के देश सेवा में अपन जीवन ला होम दिस। सही बात है कि सियासत दानमान ओखर सुखद भविष्य पक्का विचार कभू नहीं करें। तभे तो कोदूराम दलित जी कहीं कि जाड़ घाम बरखा के दुख सुख सहे किसान बिचारा, अदाई ददा बन के डारे सबके मुँह मा चारा, पहने ओढ़े कमरा खुमरी और चिरहा असन लंगोटी, अपिए पसिया पेज खाए कनकी कोढ़ा की रोटी। छत्तीसगढ़ के खेती किसानी और किसान के पीराला संवेदनशील मनखे कवि, लेखक, साहित्य मनीषी, पत्रकार मन ही महसूस कर सकत है। वही बन के कलम के धार किसान मन के हक में चलते, वो मन किसान ला प्रेरित भी करते कि उज्जर उज्जर घर कुरिया, अंगनाला सुघर बनाना है, प्राण प्यारा छत्तीसगढ़ ला बगिया सही सजाना है, कि धान, राहेर, उर्दा, सोया, सरसों, गहूँ उपजाबो, और किसिम किसिम के बिजहा भर माटी ला सरसाबो, और रहन चमास उघरा अब कुर्ता नवा पहराना है, प्राण प्यारा छत्तीसगढ़ ला बगिया सही सजाना है।
अइसन प्रेरक रचना ले किसान साथी मन प्रेरित घलो होते और खेती के नवा नवा तकनीक अजमाते।

0: थे। तभी कवि कही थे कि सूजी ले साइबर तक औ तरिया ले बांधा तक हमर राज ल सिरजे पर विश्वकर्मा बन जावा रे। धान कटोरा रहिस तैया अब बनही रतन के थारी अब पुरखौती गुमान छोड़ के उन्नत के जिहा जुड़ावा रे विश्वकर्मा बन जावा रे। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के संगे संग बारामासी तिहार घलो चलत रही थे। ये तिहार मन के सोझ संबंध खेत और ओकर उत्पादन से जुड़े होते। पानी अच्छा गिरीस तब अच्छा फसल त किसान की दीवारी ही दीवारी और कहूँ अकाल पर गए तो भूखमरी और बेगारी। फिर कुछु हो है, किसान अपन खेत ला नहीं छोड़े और अपन मन के भाव ला भी नहीं छोड़े। आषाढ़ से लेके फागुन बैसाख तक किसान की गतिविधि रोमांच रोमांस के वर्णन छत्तीसगढ़ी गीतकार मन करते। त कहानीकार मन अपन कथा में प्रमुख पात्र किसान ला बनाते और सकारात्मक पहल करते। सावन के महीना सब ला भाते तो किसान किसे बहाँची वहू आनंद उठाते। अपन किसानिन के सुरता में गाते पुरवैया सनन सनन झिमिर झिमिर गिरे पानी अजोड़ी के रंग मरंगे सांवरी रचाए मेहंदी। ऊपर ले बरसा होवै पानी छमर छम छम छम अब बाजत है पैरी सहीन छनर छनर छन छन छन नगरिया जोते तन तन देख सावन के बूंदी अजोड़ी के रंग मरंगे सांवरी रचाए मेहंदी। किसान के जिंदगी ऊपर कतको गायक मन गा के अमर हो गए जिसे केदार यादव मिथिलेश साहू ममता चंद्राकर कविता वासनिक लक्ष्मण मस्तूरिया बैताल राम साहू पंचराम मिर्जा गोरेलाल बर्मन शेख हुसैन कुलवंतीन बाई रेखा दीवार बहुत अकन नाम है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार मनला उभारे माँ दाऊ रामचंद देशमुख दाऊ मंदरा जी खुमान साव दीपक चंद्राकर जिसे मनीषी मन के जब्बर हाथ है। छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार हीरा लाल काव्य उपाध्याय सुंदर लाल शर्मा लोचन प्रसाद पांडे परदेसी राम वर्मा निरूपमा शर्मा अशोक बंजारा मंगत रविंद्र रामनाथ साहू हर प्रसाद नीडर मन के रचना में किसान ओखर जिगरी संगी खेत ओखर मितानी ओखर जिंदगानी के जीवन दृश्य देखे पर मिलते। आखिर में सबोल सकेल के कह सकत हन कि छत्तीसगढ़ में खेत किसान और साहित्य एक दूसर के संगी संगवारी आए। तीनों एक दूसर के धड़कन हावे। खेत किसान के जिए के साधन हावे। किसान राज के समृद्धि के आधार हावे। तो साहित्यकार ये मन के जीवन संघर्ष के गवाही हावे। छेवरहा मैं कह सकत हूँ छत्तीसगढ़ हा खेत किसान और साहित्य के दम से समृद्ध बनही और बनही खचित बनही। जय जोहार नमस्कार।
1: छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार ए विषय में अभी आप मन वार्ता सुनत रहो डॉक्टर अशोक नारायण बंजारा ले। कार्यक्रम में आगू बढ़त हावन और आप मन सुनवात हावन कहानी जेकर शीर्षक हावे नोनी के पाख। और ये कहानी आप मन सुनवात है श्री शेष नारायण गुप्ता।
2: एक नानकुन गांव करंजी में सुमरौतीन बाई नाम के माई लोगन रहिस औ अपन 16 साल के बेटी पुत्री संग जीवन काटत रहिस। पुत्री 8वीं तक पढ़े रहिस। फिर गांव के लोग कहिन अब नोनी ला घर के काम सिखा पढ़ लिख के का करही। आखिर में तो चूल्हा चौका संभालना है ओला घलो ससुराल जाना है। वहाँ सास ससुर देवर ननंद के सेवा करही तभी ओका जिंदगी हर पहाही। सुमरौतीन के मन में भी डर रहिस। गांव के सरपंच के बेटा के नज़र पुत्री ऊपर पड़ गए रहिस। वो कहत रहिसे भाई तोर बिटिया ला हमार घर के पतो बना दे पढ़ाई लिखाई के जरूरत नहीं है मोर घर में आही तो राज करही। पुत्री हर रोज गांव के स्कूल के छत ला देखत रहिस। वहाँ आंगनबाड़ी के दीदी रमा सबो लइका मन ला पढ़ावत रहिस। एक दिन पुत्री रमा दीदी ला पूछिस दीदी का मैं बड़का होके तोर जैसन बन सकत हाँ महू पढ़ लिख के अपन जिंदगी ला संवारना चाहत हाँ। रमा दीदी मुस्काइस काबर नहीं तय मन तो ठान ले तो कसब हो सकत है। काल हमर गांव में स्व सहायता समूह के मीटिंग है तोर दाई ला

संग लेके आवे। समूह में सब्बो जन के संग बैठ के नवा नवा बात सीखी और अपन जिंदगी ला सुधारिया। मीटिंग में रमा दीदी समझाइस, सरकार बिटिया मन बर बहुत योजना चलावत है। हमर समूह के सब्बो बहनी मन बर अब अपन अपन काम करे के उपाय बतावत है। अब कोनो के आश्रित हमन नहीं रहन। सुमरौतिन के आँखी खुल गए, वो पुत्री के हाथ धर के कहिस, बिटिया तै पढ़, मैं तोर संग हूँ। बिटिया पढ़ते लिखते तो दोनों कुल मैके और ससुराल ल तार देते। गांव वाला हसीन, तै का कर लही, ए सरपंच धमकाइस, फिर सुमरौतिन डरे नहींस। वो समूह में जुड़ गए, लोन लेके दोना पत्तल बनाना सीखीस, पुत्री फिर ले स्कूल जाए लगीस। अब जिंदगी के गाड़ी अच्छा ल चले लगीस। 3 साल बाद पुत्री 10वीं पास कर लीस और सिलाई में भी होशियार हो गए। सुमिरिन के दोना पत्तल के काम चल निकरीस। अब वो गांव के और बाई मल्ल भी काम सिखावत रहीस। दोना पत्तल बना के आसपास के गांव और शहर तक में होटल में पहुँचे लगीस। दोना पत्तल ले पर्यावरण के भी रक्षा होए लगीस। पेड़ के हर जिनिस हर जियत भर मनखे मन के संग चलते। एक दिन उही सरपंच के बेटा अपन मेहराऊ रूबर ब्लाउज सिलवाए आइस। पुत्री ल देख के ओकर सिर झुक गए। पुत्री कहिस, भैया नारी ल कमजोर मत समझ, मौका मिले तो वो सब कुछ कर सकत है। आज पुत्री गांव के स्कूल में सिखाई सिलाई सिखाते। सुमरौतिन के समूह में 30 ठन बाई मन जुड़ गए है। सबो अपन खाता में पैसा जमा करते। पुत्री के हिम्मत देख के गांव के और के बिटिया मन भी के मन में आस जगीस। रुकमणी, सगुनी और छोटी बुधनी हर रोज पुत्री के सिलाई सेंटर में आवत रहीन। पुत्री उकरल मशीन सिलाना, मशीन सिखाना, नाप लेना और डिजाइन बनाना सिखावत रहीस। फिर गांव के कुछ बूढ़ा मन ले बात खटक गए। एक दिन पंचायत बैठीस, बैगा बाबा कही, सुमरौतिन तोर बिटिया गांव के रीति रिवाज बिगाड़त है। लड़की मन अब घर के काम छोड़ के मशीन ठोकत है, ये हमर संस्कृति के खिलाफ है। सुमरौतिन अब डरने वाले नहीं रहीस। वो खड़े होके कही, बाबा संस्कृति के नाम ले हम कब तक बिटिया मन के पाँख लग काटत रहो। मोर आदमी के मरे ले 5 साल हो गए, अब मैं हाथ पर नहीं चला हाँ तो आज मैं और मोर बिटिया भा भीख मांगत रहतीन। काम करना का संस्कृति के खिलाफ है। रमा दीदी के साथ दे इस शासन की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महतारी जतन योजना हमर बर ही तो बने हैं। बिटिया पढ़ी लिखी तभे तो गांव आगे बढ़ी। बात बढ़ गए, सरपंच के बेटा फिर से अड़ंगा डारीस और रात में पुत्री के सेंटर के ताला तोड़ दीस और सबो मशीन में माटी भर दीस। बयान होइस तो पुत्री देख के रो पड़ीस। गांव के बाई मन जब ये सुनीन तो पहली बार एकजुट हो गए। 30 ठन बाई मन लाठी लेके सरपंच के घर पहुँच गईन। सुमरौतिन गरज के कहिस, बहुत सहलेन, अब हमार बिटिया के कोनो आँख उठा के देखी तो हम चुप नहीं बैठबो। एक खबर कलेक्टर तक पहुँचीस। कलेक्टर मैडम खुद गांव आईन। पुत्री के काम देख के वो बहुत खुश हो गईन। उकर आदेश में पुत्री ला 5 लाख के अनुदान मिलीस। नया मशीन, कपड़ा और पक्का कमरा भी बन गए। पुत्री और सब महिला मन खुशी ले झूम उठीन। 5 साल बाद आज करंजी गांव के नाम बदल गए है। अब लोग उहला नोनी के पाँख कथें, नोनी के पाँख के गांव कथें। पुत्री के सिलाई संगवारी केंद्र में 60 ठन बाई काम करते हैं। रुकमणी अब समूह के अध्यक्ष है। सगुनी ऑनलाइन आर्डर लेके ब्लाउज डिजाइन करते। छोटी बुधनी शहर में फैशन डिजाइन पढ़ते। नवा नवा फैशन सीख के गांव के महिला संगवारी मल्ल सिखाए लगीस। सुमरौतिन अब गांव के सरपंच है, पहली महिला सरपंच। वही पंचायत भवन में जहां कभी ओकर बेइज्जत होए रहीस, आज वो बिटिया मन के हक में फैसला सुनाते। गांव में एक पेड़ माँ के नाम योजना लागू करके हर

0: छत्तीसगढ़ म पेड़ लगाते एकर अभियान वो छेड़ दे हवय। पिछले महीना हुई सरपंच के बेटा अपन बेटी लेके आए रहीस, हाथ जोड़ के कहीस, दाई मोर से गलती हो गई रहीस, मोर बेटी ला भी तोर जैसे बनाना चाहत हाँ, एला अपन संग म रख और इहू ल आगू बढ़ाओ। सुमरौतिन मुस्का के कहीस, बेटा देर आए दुरुस्त आए, बिटिया के पाँख कांटे वाला नहीं, उमन ल आसमान दिखाने वाला बन। अब जुन्ना जमाना गुजर गए, महिला मन भी पुरुष के कंधा ले कंधा मिला के चल सके, ये तैयार होना सबको ला जरूरी है। आज करंजी के हर घर में एक ठन सिलाई मशीन है और हर नोनी के आँख में एक ठन सपना, काबर कि एक सुमरौतिन के हिम्मत ले पूरा गांव के तकदीर बदल गए। गांव में पैसा बरसे लगे है और हर तरफ खुशहाली दिखते।
1: अभी आप मन श्री शेष नारायण गुप्ता ले कहानी सुनत रहा, जेकर शीर्षक रही सावय नोनी के पाँख। कार्यक्रम में आगे बढ़त हन और आप मन ल सुनवात हन कविता पाठ श्रीमती मधु तिवारी ले।
2: मोर पहली रचना सुनिह गवई गांव।

0: बुला रहे।
1: अभी आप मन श्रीमती मधु तिवारी ले कविता पाठ सुनात रहे। अब एक संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी भाषा में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

नमस्कार, शुभ प्रभात। आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम गुंजन में मैं राजीव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोता साथियों, हर नया दिन अपने साथ कुछ नई रोशनी, कुछ नई उम्मीदें और कुछ ऐसी स्मृतियाँ लेकर आता है जो समय के साथ साथ इतिहास तो बन जाती हैं लेकिन हमारे दिलों से कभी दूर नहीं होती। आज का ये अंक भी कुछ ऐसी ही यादों, संवेदनाओं और सकारात्मक संदेशों से सजा है। आज की इस संगीत यात्रा में हम याद करेंगे

भारतीय सिनेमा के महानायक दिलीप कुमार को। बात करेंगे जीवन में मिठास घोलने वाले विश्व चॉकलेट दिवस की, समझेंगे ग्लोबल फॉरगिवनेस डे यानी क्षमा के महत्व को, मानसून और हरियाली का स्वागत करेंगे, बरसात के मौसम में सर्पदंश से बचाव जैसी महत्वपूर्ण जन जागरूकता की बात भी करेंगे। तो आइए संगीत और विचारों की सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों 7 जुलाई भारतीय सिनेमा के लिए एक भावुक दिन है। इस दिन वर्ष 2021 में हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार ने संसार को अलविदा कहा था। उनका जाना केवल एक कलाकार का जाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम अध्याय का विराम था। अभिनय की दुनिया में उन्हें जितना सम्मान मिला उतना ही प्रेम उन्हें दर्शकों के दिलों से मिला। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। विभाजन से पहले उनका परिवार मुंबई आ गया और यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। कहा जाता है कि अभिनेत्री एवं स्टूडियो प्रमुख देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में आने की प्रेरणा दी और दिलीप कुमार का नाम भी दिया। वर्ष 1944 में फिल्म ज्वारभाटा से उन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। किसी भी महान कलाकार की पहचान केवल उसकी लोकप्रियता नहीं होती बल्कि ये होती है कि समय बीत जाने के बाद भी लोग उसे उतने ही प्रेम से याद करें। आइए दिलीप कुमार की यादों को सलाम करते हुए सुनते हैं उनकी सदाबहार फिल्म नया दौर का एक अमर गीत।

0: आपने सुना दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म नया दौर का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है एक बार फिर गुंजन में। दोस्तों, दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा गया, लेकिन ये उपाधि केवल दुखांत भूमिकाओं के कारण नहीं मिली। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और संवादों की सादगी दर्शकों के मन में सीधे उतर जाती थी। वे अभिनय नहीं करते थे, बल्कि अपने पात्रों को जीते थे। यही कारण है कि उन्हें भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग का अग्रदूत भी कहा जाता है। उनके यादगार फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अंदाज, दीदार, दाग, देवदास, नया दौर, मधुमति, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, क्रांति और शक्ति जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज भी फिल्म संस्थानों में उनके अभिनय का अध्ययन किया जाता है। एक अभिनेता को पहले एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। शायद यही कारण है कि उन्होंने अभिनय के साथ साथ अपने व्यक्तित्व से भी लोगों का दिल जीता। जब भी दिलीप कुमार का नाम लिया जाता है तो उनकी फिल्मों के गीत अपने आप होंठों पर आ जाते हैं। आइए सुनते हैं एक और यादगार गीत।

जो उनकी सिनेमाई विरासत को आज भी जीवंत बनाए हैं। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कर्मा से कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

0: कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म कर्मा का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: दोस्तों, किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि दर्शकों का प्रेम होता है, और दिलीप कुमार को ये प्रेम जीवन भर मिलता रहा। उन्हें 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, जो लंबे समय तक रिकॉर्ड रहा। उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से अलंकृत किया गया।

आज के अनेक अभिनेता कई बार कई अवसरों पर स्वीकार कर चुके हैं कि दिलीप कुमार उनके लिए प्रेरणा रहे हैं। अभिनय की दुनिया में उनका योगदान केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अभिनय की भाषा और शैली को भी बदल दिया। समय आगे बढ़ जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज हो जाते हैं। दिलीप कुमार भी एक ऐसा ही नाम है। आज उनकी पुण्यतिथि पर गुंजन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए सुनते हैं एक और ऐसा गीत जिसकी धुन के साथ उनकी यादें हमेशा जुड़ी रहेंगी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लीडर से।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म लीडर का गीत। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए...

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम। दोस्तों, अभी हमने भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे दिवस की जिसका नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। दोस्तों, आज विश्व चॉकलेट दिवस भी है। माना जाता है कि 7 जुलाई 1550 के आसपास यूरोप में चॉकलेट के व्यापक रूप से लोकप्रिय होने की याद में ये दिन मनाया जाने लगा। आज चॉकलेट केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन, बधाई और खुशियों का प्रतीक बन चुकी है। जन्मदिन हो, किसी की सफलता हो, दोस्तों का इजहार हो, या फिर किसी रूठे अपने को मनाना हो, एक छोटी सी चॉकलेट अक्सर वो काम कर जाती है जो लंबे लंबे शब्द भी नहीं कर पाते। तो क्यों ना इस मीठे एहसास के साथ सुने एक ऐसा फिल्मी गीत जिसमें प्यार की मिठास और मुस्कुराहट की गर्माहट दोनों मौजूद हों। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हेना से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म हिना का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू।
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
2: बेबी को बेस पसंद है।
0: स्वागत है आपका एक बार फिर गुंजन में, बातों के क्रम में। श्रोताओं, चॉकलेट का स्वाद भले ही कुछ पल के लिए जुबान पर रहता हो, लेकिन किसी का मीठा व्यवहार वर्षों तक दिल में बस जाता है। यही वजह है कि जीवन की सबसे बड़ी मिठास किसी दुकान में नहीं मिलती, बल्कि हमारे शब्दों, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों में बसती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सीमित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली डार्क चॉकलेट में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मन को प्रसन्न रखने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन हर मिठास की तरह इसका आनंद भी संयम के साथ ही अच्छा लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा मिठास स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। संतुलन हर जगह आवश्यक है। आज के व्यस्त जीवन में यदि हम दिन में कुछ पल अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने सहयोगियों के साथ मुस्कुराकर बिताएं, तो शायद वही सबसे बड़ी मिठास होगी। एक मीठा शब्द, एक सच्ची प्रशंसा और एक छोटी सी मदद किसी के पूरे दिन को सुंदर बना सकती है। रिश्तों की मिठास और दिलों की मुस्कान को समर्पित सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आरोप से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। माया गोविंद का लिखा गीत, भूपेन हजारिका का संगीत निर्देशन,

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म आरोप का गीत। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं गुंजन, बातों और गीतों का कार्यक्रम। श्रोता साथियों, मिठास की बात से अब हम बढ़ेंगे जीवन के एक और महत्वपूर्ण मूल्य की ओर। कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी मिठास तब लौटती है जब हम मन से किसी को क्षमा कर देते हैं। अगले पड़ाव पर अब बात होगी ग्लोबल फॉरगिवनेस डे यानी क्षमा की शक्ति की। दोस्तों, जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयाँ अक्सर बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती हैं। कभी किसी की कही हुई बात चुभ जाती है, कभी कोई अपना विश्वास तोड़ देता है, तो कभी अनजाने में हम स्वयं किसी का दिल दुखा बैठते हैं। समय बीत जाता है लेकिन मन में जमा हुई शिकायतें और कटु यादें हमारे भीतर कहीं ना कहीं घर कर लेती हैं। ऐसे ही मन के बोझ को हल्का करने का संदेश लेकर आता है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, विश्व क्षमा दिवस। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम हुई गलती को सही ठहरा दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन को क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की आग से मुक्त करें। जिस दिन मन क्षमा करना सीख जाता है, उस दिन जीवन थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और थोड़ा अधिक सुंदर हो जाता है। कहा भी गया है, जहाँ मन निर्मल होता है वहीं प्रेम अपना घर बनाता है। इसी भावना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम में एक ऐसा गीत जो रिश्तों की गर्माहट और अपनत्व का एहसास कराता है। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मिस्टर इंडिया से किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं गुंजन बातों और गीतों का कार्यक्रम। साथियों, बारिश की पहली बूंद जब तपती धरती को छूती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती, मन भी महक उठता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, खेतों में लहलाती फसलें, पेड़ों पर लौटती चहचहाट और ठंडी हवाओं का स्पर्श, ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं कोई मधुर राग छेड़ रही हो। बरसात का मौसम केवल मौसम नहीं बल्कि आशा, नवजीवन और नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। किसान के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, नदियां फिर से बहने लगती हैं और धरती अपनी हरी चादर ओढ़ लेती है। बरसात हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी तपिश क्यों न हो, एक दिन राहत की फुहार अवश्य आती है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, जैसे सूखी धरती अंततः वर्षा का स्पर्श पाती है, वैसे ही संघर्षों के बाद जीवन में खुशियों की हरियाली भी लौटती है। शायद प्रकृति हमें हर साल यही विश्वास दिलाने आती है कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इन भीगी फिजाओं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सावन की मस्ती को समर्पित सुनते एक मधुर वर्षा गीत। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मंजिल से, किशोर कुमार की आवाज़ में, योगेश की शब्द रचना, आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन।

दोस्तों, हर मौसम अपनी कुछ सावधानियां भी साथ लेकर आता है और बरसात का मौसम भी इसका अपवाद नहीं है। लगातार वर्षा के कारण जल भराव, फिसलन और झाड़ियों में छिपे जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। विशेष रूप से सांप अपने बिलों में पानी भर जाने के कारण सुरक्षित स्थानों की तलाश में घरों, खेतों और आसपास के इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए खेतों या घास झाड़ियों में जाते समय पूरी बांह के कपड़े और मजबूत जूते पहने, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करें, घर के आसपास झाड़ियों और कचरा जमा न होने दें, अनाज, लकड़ी या ईंटों के ढेर को संभालते समय भी सावधानी रखें। थोड़ी सी सतर्कता बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो घबराएं नहीं, प्रभावित व्यक्ति

को शांत रखें, काटे गए अंग को यथासंभव स्थिर रखें और बिना देर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाएं। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म अपना देश से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत निर्देशन।

0: आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 9:55 होने वाले हैं
1: प्रादेशिक समाचार।
0: अब हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित
1: समाचार सुनिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सहकारी सप्ताह का हुआ समापन। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को कल रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह का कल समापन हुआ। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता और वन मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 216 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सकल लाभ अर्जित किया है। कार्यक्रम को सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने भी संबोधित किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और शिक्षा के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। विकल रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉ. मुखर्जी की स्मृति में राज्य के सभी संभागीय और जिला मुख्यालयों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने

0: 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल 8 जुलाई को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के पद्मश्री तथा राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों के साथ अनेक लोक कलाकार गीत पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में एक अवदाब बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना जताई है। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी सप्ताह का हुआ समापन। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया। प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को कल रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

छत्तीसगढ़ की उपजाऊ धरती पर सिर्फ फसलें ही नहीं लहलहाती, बल्कि यहाँ की मिट्टी मेधा को भी बहुतायत से जन्म देती है।

0: इसी धरती की गोद में पलकर नौनिहालों ने अपने ज्ञान का परचम फहराया है, अपने हौसलों को नई उड़ान दी है। छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी सरकार की बदौलत दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ रहकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के छात्रों की शिक्षा और करियर को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सिविल सेवा के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इसे युवा संभावनाओं और उपलब्धियों से जोड़ कर देखते हैं।
1: और ज्यादा हम और बेटा बेटी मल्ला अवसर देना चाहते हैं, इसलिए जो 50 सीट के हम व्यवस्था 16 बढ़ा के अभी 200 करत हैं, 150 ज्यादा हम और बेटा बेटी मन के अवसर मिली और पूरा खर्चा हम अपनी इच्छा से कहीं भी रही, लेकिन हम उनके सरकार उनके खर्चा ला वहन करें। तो सब सरकार के तरफ से प्रयास है कि हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे अधिक से अधिक बेटा बेटी मन UPSC पास करें और भी क्षेत्र में मेडिकल में और भी उनमें उनके सिलेक्शन हुए और अपन माता पिता के नाम और छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करें।
0: राजीव युवा उत्थान योजना के तहत संचालित दिल्ली के छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल में प्रदेश के आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए एक बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध है। ये हॉस्टल विशेष रूप से UPSC जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ के छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाती है। छात्रों को भोजन, पुस्तकों और नोट्स के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों के कारण हॉस्टल की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 सीटों की कर दी गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल के सहायक आयुक्त श्री प्रतीक धुरंधर।
2: छत्तीसगढ़ एज असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम शिखर योजना अंतर्गत ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। ट्राइबल यूथ हॉस्टल में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी दिल्ली में निःशुल्क कराई जाती है। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सुदूर एवं जनजाति क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें दिल्ली में रहकर देश के जो सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है उनमें प्रशिक्षण कराना एवं देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर चयनित करना। इसके लिए हम छात्रों को अंग्रेजी माध्यम हेतु 2 लाख रुपए, हिंदी माध्यम हेतु 1.5 लाख रुपए कोचिंग शुल्क प्रदाय करते हैं, जिसके साथ ही प्रतिमाह 12,000 रुपए की मासिक प्रतिपूर्ति भोजन परिवहन इत्यादि हेतु भी छात्रों को प्रदाय की जाती है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार 14 एम्पैनल कोचिंग संस्थान में से किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और ये जो हमारे एम्पैनल कोचिंग संस्थान है वो सबसे प्रतिष्ठित जो UPSC की कोचिंग संस्थान है वो है, जैसे वाजीराव, विजन, दृष्टि, ये सभी हमसे एम्पैनल हैं। साथ ही ट्राइबल यूथ हॉस्टल में छात्रों को लाइब्रेरी, मेस, जिम इत्यादि की भी सुविधा है। पूर्व में ट्राइबल यूथ हॉस्टल छत्तीसगढ़ के छात्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में IRS, IRTS, असिस्टेंट कमांडेंट, राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, DSP इत्यादि जैसे अब तक कुल 181 छात्र प्रशासनिक पदों पर चयनित हो चुके हैं। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके पश्चात रायपुर में ही इसकी परीक्षा दी जाती है। परीक्षा के जो मेरिट लिस्ट होती है उसके अनुसार छात्रों का चयन किया जाता है और वर्तमान में जो हमारी इस योजना की प्रावधानित सीटें हैं वो 200 हैं, जिसमें से 185 फाउंडेशनल कोर्स की सीटें हैं जो नए बच्चे होते हैं एवं 15 रिपीटर बैच की सीटें हैं। जो बच्चे पूर्व में UPSC प्री या मेंस क्वालिफाई कर लिए होते हैं उन्हें हम रिपीटर बैच में भी जगह देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराया गया, उसमें ट्राइबल यूथ हॉस्टल से अध्ययनरत 13 छात्र प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण

उत्तीर्ण हुए हैं और वह सभी अभी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जो 13 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने भी शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन किया। उन सभी को शुभकामनाएं दी कि आने वाले आगामी मुख्य परीक्षा जो कि अगस्त माह में कंडक्ट कराई जानी है उसमें वो अपना बेस्ट दें और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। पूर्व में इसमें 50 सीटें प्रावधानित थी, 2024 से 50 सीट से बढ़ाकर इसे 200 सीट कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 200 सीटें हैं जिसमें 185 फ्रेशर के लिए हैं, 15 रिपीटर के लिए हैं एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा एक और पहल की जा रही है कि कुछ छात्रों को हम छत्तीसगढ़ रायपुर में रहकर भी यूपीएससी की कोचिंग चयन का आधार एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है यूपीएससी के तर्ज पर ही जो 200 नंबर की होती है, 100 सवाल आते हैं जिसमें जिसका नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी किया जाता है। नवंबर दिसंबर में उसका एग्जाम होता है जिसका मेरिट लिस्ट करीबन एक हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाता है। 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है छात्रों को कि वहाँ की वो यहाँ से दिल्ली आए और दिल्ली में अपना एडमिशन कराकर किसी भी कोचिंग संस्था में अपना एडमिशन कर अपनी प्रशिक्षण जारी रखें। इसमें दो तरह से हम आर्थिक मदद करते हैं बच्चों को। एक तो हम उन्हें कोचिंग शुल्क प्रदान करते हैं जैसे कि अंग्रेजी माध्यम हेतु 2 लाख रुपए और हिंदी माध्यम हेतु 1.5 लाख रुपए कोचिंग शुल्क बच्चों को प्रदान की जाती है। उस कोचिंग शुल्क का प्रयोग वह हमसे एम्पैनल 14 कोचिंग संस्थान है उनमें से किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और उस कोचिंग शुल्क को वो रिइंबर्स करवा सकते हैं। वैसे ही कोचिंग शुल्क के साथ साथ उन्हें मासिक प्रतिपूर्ति भी प्रदाय की जाती है जो कि प्रति माह 12,000 रुपए होती है जो कि यहाँ उनके रहने, भोजन, परिवहन इत्यादि हेतु सहायता उनके लिए की जाती है। ऐसी दूरदर्शी योजनाओं के कारण अब हमारे राज्य के ही वंचित वर्ग के बच्चे, सुदूर एवं जनजाति क्षेत्र के बच्चे भी अच्छे नंबरों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। ऐसा विजन है हमारा कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं वह यूपीएससी और बाकी देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदों पर चयनित होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हर रूप में हम छात्र की मदद कर रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार ने प्रदेश के गांवों, शहरों और कस्बों में रहने वाले शिक्षित युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। इसी तारतम्य में दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल में कोचिंग प्राप्त कर यूपीएससी परीक्षाओं में हर साल छत्तीसगढ़ के युवा सफल हो रहे हैं। यूपीएससी की आरंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता के लिए छात्र भी कमर कसकर तैयार रहते हैं। यहां कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र आभारी हैं छत्तीसगढ़ सरकार के।
1: मेरा नाम हरिचंद्र प्रकाश सिंह है और मैं कोरबा जिले का निवासी हूं। मेरे पिताजी एसएससीएल में कार्यरत हैं और मैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ट्राइबल डिपार्टमेंट के आयोजित राजीव उत्थान योजना के अंतर्गत मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल का छात्र रहा हूं। इस वर्ष 2026 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स स्टेज में मैंने सफलता हासिल की है। अभी उसका मुख्य परीक्षा एवं पर्सनल इंटरव्यू राउंड बाकी है। मेरी सफलता पर छत्तीसगढ़ शासन का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। जैसा कि मैं ट्राइबल यूथ हॉस्टल का छात्र रहा हूं, हमें शासन द्वारा कोचिंग के हेतु 2,00,000 रुपए का राशि प्रदान किया जाता है एवं जो हमारे मासिक खर्च वहन करने के लिए हमें 12,000 रुपए प्रति माह आवंटन किया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ शासन का आभार मानता हूं जिन्होंने ऐसे एकीकृत अनुभव कराया और हमारे सफलता के साथी बने। कई बार जो समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकारी के साथ हमारे इंटरेक्शन सेशन भी कराए जाते थे जिससे हमें अपने प्रिपरेशन में होने वाली समस्याओं का निराकरण मिलता था एवं कई बार छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों द्वारा भी आगमन हुआ जिससे योजना को और कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए उस पर भी चर्चा हुई और इस योजना से हमें काफी लाभ प्राप्त हुआ और ये हमारी सफलताओं की सीढ़ियों चढ़ने पर हमारी पूर्ण रूप से सहायक है। प्रीलिम्स परीक्षा जैसे हमने ये स्टेज क्लियर किया है तब हमें यह सहयोग प्राप्त हुआ है कि जितने भी हमारे जो पूर्ण बैच से निकले हुए जितने भी अधिकारी जो अभी छत्तीसगढ़ कैडर में अभी शामिल हुए हैं अथवा जो हमारे सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर है सोनमणि बोरा सर, उनके द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि हमें और किसी द्वारा सहायता किस और भी कैसे सहायता प्राप्त हो सके, जो हमारे टॉपर्स हैं उनसे हमें कैसे मदद मिल सके, उनके जो नोट्स हैं उनका जो अनुभव है वो हमें कैसे प्राप्त हो सके, तो उनके लिए हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप

बनाया गया है, और वो हमें एक मेंटर असाइन किए हुए हैं जो समय समय पर ऐसे वीकली हमारा अपडेट देते रहते हैं कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और अभी हम कितना परिपक्व हो चुके हैं। जैसे जो हमारे छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल है, वहाँ का जो माहौल है, जैसे कि आप देखेंगे कि ओल्ड अजिंदा नगर है, करोल बाग है, वैसे ही उसी भी परिरूप में जो हमारा ट्राइबल यूथ हॉस्टल है, वहाँ हम छात्राओं को जो वहाँ के जो जो टीचर्स हैं, जो वहाँ के मेंटर्स हैं, उनको समय समय पर बुलाकर हमारा एक मेंटरशिप सेशन रखा जाता है। प्लस वो यूथ हॉस्टल के शुरुआत में जब जब हमारा वहाँ एडमिशन होता है, तब वहाँ के जो टीचर्स आते हैं वो हमारा ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं, हमें क्या क्या करना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है, इस विषय पर एक जानकारी देते हैं और एक विस्तृत रूप से हमें समझाइश देते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के युवा परिश्रमी और उत्साही हैं। यही वजह है कि कठिन माने जाने वाली परीक्षाओं में वे शामिल भी होते हैं और सफल भी होते हैं। आज अनेक प्रशासनिक पदों पर यहाँ के युवा पदासीन हैं, लेकिन पहले एक दौर ऐसा भी था जब छत्तीसगढ़ के बहुत कम युवा इन प्रशासनिक परीक्षाओं को क्रैक कर पाते थे। राज्य सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था की और दिल्ली में छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना की। यहाँ बहुत अच्छी अकादमिक पढ़ाई के कारण छत्तीसगढ़ के युवा अब अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र सफल होकर देश प्रदेश और समाज की सेवा कर सकें। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा इस संबंध में बिल्कुल आश्वस्त नजर आते हैं।
2: छत्तीसगढ़ शासन की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रयास है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता जो है वो है एक प्लेटफॉर्म या उनको गाइडेंस देने की, मेंटोरिंग करने की। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विशेषकर जो यूपीएससी का जो तैयारी है ये काफी लंबा होता है, लगभग एक साल का तैयारी करने के बाद जो सफलता अर्जित करते हैं वो प्रशासनिक सेवा में विभिन्न पदों पे उनका नियुक्ति के पश्चात हो जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात ऐसी है कि बहुत ही कम हमारे जो युवा है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके इन प्रशासनिक सेवा में आ पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे आदिम जाति विकास विभाग द्वारा ये एक प्रोग्राम लाई गई कि हमारे जो होनहार एसटीएससी ओबीसी के बच्चे हैं, इनको ट्राइबल यूथ हॉस्टल जो नई दिल्ली में स्थापित की गई है वहाँ पे उनको पढ़ने का, रहने का, खाने का सब निशुल्क रूप से वहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। और इसके लिए जो प्रतिष्ठित जो एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे उनको जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो छत्तीसगढ़ शासन वहन करेंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों पूर्व में इस हॉस्टल में 65 सीट्स थे जिसको बढ़ा के 200 सीट कर दी गई है। और हॉस्टल के अलावा हमारे जो अलग अलग नई दिल्ली में जो कोचिंग का सेंटर के साथ जो तैयारी करते हैं, जो किराए में रहते हैं, उनका भी किराए जो है स्टाइपेंड हम लोग रीइंबर्समेंट करते हैं। और जो पढ़ाई का खर्चा है, जो एकेडमी है

कोचिंग सेंटर है। हिंदी माध्यम में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए 1.5 लाख, और जो अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के उनके लिए 2 लाख राशि का रिइंबर्समेंट जो है शासन द्वारा की जाती है। प्रतिवर्ष जो है बच्चों के एक यहाँ पे टेस्ट कराते हैं, एक एग्जाम होता है, लिखित रूप से लिया जाता है, और बड़ी संख्या में जो है हमारे यूथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो मेरिट सूची है उसके आधार पे उनको दिल्ली में दाखिला दी जाती है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष से हम एक इसको नए कलेवर में पूरे स्कीम को ही हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं, और ये बहुत शीघ्र ही जो है इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी। और छत्तीसगढ़ शासन ने ये निर्णय किया है कि केवल यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, एसएसबी में जाना चाहते हैं, रेलवेज में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका जो तैयारी करते हैं उनको भी हम लोग प्रोत्साहन जो है दी जाएगी। और साथ ही जो हमारे बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, लॉ के लिए हो, ये 3 वर्टिकल्स में इसको इस स्कीम को तैयार की गई है, और बहुत जल्दी ही जो है इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। ग्रेजुएशन हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया रखे हैं, क्योंकि जो यूपीएससी एग्जाम है वो ग्रेजुएशन मिनिमम उसका आवश्यकता है, तो उसी के मद्देनजर जो है इस एग्जाम के लिए वही हम लोग न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखे हैं। हम लोग एक्चुअली जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था हम लोग ने नहीं किया है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है ये एक बड़ा जटिल प्रक्रिया भी है, लंबी प्रक्रिया भी है, और आप जानते हैं कि हर कोचिंग सेंटर का अपना अपना एक वो रहता है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो बड़ा एक्सपर्टीज होती है, या किसी का जैसे जनरल नॉलेज में होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को ज्योग्राफी का ही ऑप्शनल है और उनको उसका तैयारी करना है, तो ज्योग्राफी में जो सबसे बेस्ट जो कोचिंग सेंटर होंगे उस सेंटर में वो लेना चाहेंगे या लेना चाहेगी। ऐसे ही जिनको जिस प्रकार की जरूरत है अपने ऑप्शनल के हिसाब से या जीके की तैयारी के हिसाब से, तो वो अपना जो है जो कोचिंग सेंटर है वो खुद चुनते हैं, वहाँ दाखिला लेते हैं, और उसका जो खर्चा है मैंने जैसे बताया उसका रिइंबर्समेंट हम लोग करते हैं। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष एक रिकॉर्ड संख्यक हमारे 13 प्रतिभावान यूथ ने जो है उस हॉस्टल से जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा है उसको पास कर ली है। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने से मुलाकात भी की है, और हम सब उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये सभी बच्चे जो है फाइनली अंतिम पड़ाव तक जाए और उत्तीर्ण होकर जो है देश की सेवा करे, राज्य की सेवा करे। साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है ये इसके लिए बकायदा जो है एडवर्टाइजमेंट निकलती है और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाती है, और हमारे वेबसाइट में भी इसका जानकारी दी जाती है, और इसके लिए संपर्क जो है जो भी संबंधित जिला है वहाँ के एससी ट्राइबल के माध्यम से जो है इसको किया जा सकता है, और इसके लिए एग्जाम जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं और उस एग्जाम के माध्यम से इसको सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी पूरा प्रोग्राम को ही हम रिव्यूम कर रहे हैं, और आने वाला समय में ये फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे और अधिक जो है सीट्स भी इसमें होंगे, और हम लोग ने इसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सेंटर जो है हम लोग रायपुर में भी स्थापित करेंगे, ताकि दिल्ली जाने से पहले हमारे बच्चे को एक कंडीशनिंग जो है उनको एक एक्सपोजर की जो बात है प्रारंभिक तैयारी जो है हम रायपुर या जो एक और एक दो जगह में उनको तैयारी कर सके, उसके बाद उनको दिल्ली में बेस्ट ऑफ दी कोचिंग सेंटर में उसको ले जाने का एक उस प्रकार के रणनीति के साथ हम लोग पूरे स्कीम को जो है रिवैम्प इस साल से करने जा रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ के गांव गांव तक छत्तीसगढ़ ट्राइबल हॉस्टल की ख्याति पहुंच चुकी है। गांव के पढ़े लिखे युवा अब उचित मार्गदर्शन के अभाव में भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने अब है अपनी प्रतिभा को पंख लगाकर उड़ान भरने का बेहतरीन विकल्प। प्रदेश सरकार के सहयोग के कारण सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी अब बेहद आसान हो गई है। गांव की प्रतिभाएं अब दिल्ली का रुख जो करने लगी है।
1: मेरा नाम किशन लाल साहू है, मैं ग्राम पौनी मुंगेली जिला से आता हूं। मेरा इस साल 2026 के सिविल सेवा परीक्षा में मेरा इस बार चयन हुआ है और मैं दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहता था, जिससे मुझे काफी मदद हुई रहने में और यहाँ आके तैयारी करने में, और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का काफी धन्यवाद करता हूँ। काफी अंतर था, वहाँ वो इन्वायरमेंट नहीं था यूपीएससी का, और यहाँ के काफी जो पीयर ग्रुप जो यहाँ बने वो काफी अच्छे थे। काफी मेरे जो दोस्त हैं साथ में हमने पढ़ाई की, इससे काफी मदद हुई, और साथ में भी दो दोस्त इस बार मेंस दे रहे हैं इसके वजह से। तो ग्रुप स्टडीज काफी आवश्यक है अभी के, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम का काफी बढ़ चुका है, तो उसके लिए आपको काफी ब्रॉड पर्सपेक्टिव चाहिए रहता है, खासकर जो मेंस स्टेज है उसके लिए। तो ग्रुप स्टडी काफी आपके माइंड को ब्रॉड करती है, तो उसके लिए जरूरी है। काफी और बाकी बच्चों को भी मौका मिलेगा यहाँ आने के लिए, तो उसके लिए तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो इंक्रीज कर रही है नंबर, तो काफी बढ़िया है। बाकी जो बच्चे जो नहीं आ पाते उन्हें भी और मौका मिलेगा।
0: छत्तीसगढ़ के छात्र दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल को अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं, क्योंकि यहां सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। एक तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है, और दूसरे छात्रों को आर्थिक मदद भी मिलती है। हॉस्टल का स्वस्थ वातावरण छात्रों को मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। यूपीएससी की आरंभिक परीक्षा में सफल छात्र यहां रहकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अपनी मंजिल को छूने के लिए बेताब छात्रों को राह दिखाने में दिल्ली का ट्राइबल यूथ हॉस्टल मील का पत्थर साबित हो रहा है।
2: मेरा नाम मयंक रात्रे है, मैं जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं फिलहाल अभी ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली का छात्र रहा हूँ, और मेरा अभी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की सीएसई परीक्षा के प्री में चयन हुए हैं, जिसके लिए मुझे आगे की तैयारी के लिए मेंस और इंटरव्यू उसके अगला चरण है, और मुझे ट्राइबल यूथ हॉस्टल से काफी मदद हुई है, जो उन्होंने मुझे आर्थिक सहायता दी है, मानसिक रूप से भी मुझे बहुत प्रेरित किया है वहाँ की जहाँ मैडम थी, और हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है और उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया है, तो उसके लिए मैं काफी धन्यवाद करता हूँ सभी प्रशासन को और छत्तीसगढ़ सरकार को। हमारा चयन एक बहुत ही कठिन कॉम्पिटेटिव परीक्षा के थ्रू हुआ था, जो रायपुर में आयोजित किया गया था। तो परीक्षा में मेरिट लाने के आधार पर हमारा चयन यहाँ ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे हमारे को पूरी मूलभूत सुविधाएं, खाना, कपड़ा, रोटी, ये सब चीजें, रहने की व्यवस्था, और इवन सुरक्षा भी दी जाती थी कोचिंग में आने जाने के लिए। कोचिंग का जो 2 लाख रुपए की फीस हमको दी जाती थी, और प्रतिमा 12,000 रुपए के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया गया सरकार के द्वारा। अभी जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट, उनसे जो सेक्रेटरी साहब है सोनमणी बोरा साहब, उन्होंने आश्वासन दिए है कि हमें अभी जो मेंस की परीक्षा है उसके लिए प्रति छात्र 35,000 रुपए की सहायता प्राप्त करने की घोषणा की।

संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की इस साल की प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां रहकर तैयारी करने वाले 13 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इनमें से ज्यादातर युवा जनजाति, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, मेहनत और संकल्प का प्रमाण है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का ये अवसर यहाँ के युवाओं के लिए एक अनुपम उपहार सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा को

यूथ हॉस्टल ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां रहकर तैयारी करने वाले 13 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इनमें से ज्यादातर युवा जनजाति, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से है। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, मेहनत और संकल्प का प्रमाण है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का ये अवसर यहाँ के युवाओं के लिए एक अनुपम उपहार सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए संसाधनों के अभाव में कहीं पीछे न रह जाएं। इसीलिए सरकार ने युवा शक्ति को छत्तीसगढ़ ट्राइबल यूथ हॉस्टल की सौगात देकर एक मंच पर इकट्ठा होने का अवसर प्रदान किया है, जिसका भरपूर लाभ युवाओं को मिल रहा है। देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है, पर उसमें सफल होकर देश की सेवा करना और भी सम्मान की बात है। इसी गौरव और उपलब्धियों की पताका थामे छत्तीसगढ़ के युवा सुनहरे भविष्य का सपना संजोए अपनी मेहनत के बल पर लगातार बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:30 हुए हैं। साथियों, जान लेते हैं मौसम का हाल। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 76.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। तापमान सूचना के बाद जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे

हेलो किसानवाणी सजीव का प्रसारण समय है 7:30। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक शांडिल्य, विषय वस्तु विशेषज्ञ अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर। चर्चा के मुख्य विषय होंगे खरीफ की प्रमुख फसलें, धान और अरहर के उन्नत उत्पादन तकनीक की विधियाँ और उन्नत बीजों के प्रकार और बीज उत्पादन तकनीक की विधियाँ। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श।

दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे बच्चों की परवरिश में अनुशासन विषयक बातचीत, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित आईना क्रम, घर आंगन मेल और गीत संगीत।

सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि के 8 बजे। NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट आप सुन पाएंगे शाम के 5 बजे।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी और गैर फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली में शाम 6:20 पर आप सुन सकेंगे कुछ भोजपुरी और सरगुजिया लोकगीत। शाम 6:30 पर आप सुन पाएंगे सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है रात्रि 9:15।

श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:35 हुए हैं। अब पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं फिल्म रॉक स्टार का गीत मोहित चौहान की आवाज़ में, इरशाद कामिल का लिखा नगमा, ए आर रहमान का संगीत निर्देशन।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं हाँ। बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी।
0: हम्म।
1: आवेदे विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला।

0: बुन पारे में आए तेकर में कहन किए दे ट्रैक्टर लबिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं हाँ
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हाँ
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
0: हैं। हाँ, अबे तो शुरू है कि साहेब।
1: हाँ। तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाणी।

नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नए तराने में आप सुनते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का गीत, ऐश किंग और शशा तिरुपति की आवाज़ों में, अराफात महमूद का लिखा गीत, तनिष्क बागची का संगीत निर्देशन।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
2: कार्यक्रम नए तराने में अब सुनते हैं फिल्म लूडो का गीत हरिजीत सिंह की आवाज में। संदीप श्रीवास्तव का लिखा नगमा, प्रीतम का संगीत निर्देशन,

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म जन्नत 2 का गीत, केके की आवाज़ में। गीत सईद कादरी का, संगीत प्रीतम का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा सहयोग, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन और खनिज तथा इस्पात आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners.
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय जकार्ता में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म शक्ति से। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। डाबर तारा लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, हिशान हुसैन, मरियम और बुशरा। संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का और मनोज यादव। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह बेहद ही प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये प्यारा सा गीत फिल्म मेरे जीवन साथी से। संगीतकार हैं आरडी बर्मन और इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां।

मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू अशोक पुरी, सुशील बीके पुरी, कैलाश और आरएस पुरी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश भत्ता और भत्ता परिवार के सभी सदस्य। शारदा बिहार अमरीडी रायपुर छत्तीसगढ़ से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवांगन, भूपेश, भाग्यश्री और तुषार देवांगन। कुलारीकोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, इंद्रमन, सविता कुंदी, माफ कीजिएगा कुंती, चंदन, प्रीति और मोहनीश कश्यप। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम और एम फारूक शेख। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह प्यारा सा गीत।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230, 600।

राजेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारी, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशु और आशुतोष अंगारी, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया शोएब खान, सायमा खान, मुस्तफा खान, अफिया खान, राव भाई और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। हाय, सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए आशा भोसले की आवाज में ये वादा रहा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन की। इस गीत के फरमाइश करता है बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तान्या करमरकर, चारमीनार चौक गंडई पंडेरिया से दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला, ग्राम परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी, तुषारणी और खुमेंद्र मसीहा, अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजय, खुदी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद, बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र विजकांत सारथी। आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर ये गीत।

0: नवा कार्यक्रम शुरू होई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में अब पेश है यारा दिलदारा फिल्म का ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की। इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति हनक्ष और आरू साहू। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और छाविंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी कव्या और सुच्चा पाठक। धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन यूपी से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा, पीहू और परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम

0: रब फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: कार्यक्रम में अब पेश है परदेस फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाज है कुमार सानू की, संगीतकार है नदीम श्रवण और गीतकार है आनंद पक्षी। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाड़कर, सरिता कवाड़कर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश कवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश कवाड़कर, वैशाली कवाड़कर, श्वेता सुमित कवाड़कर और कुमारी ध्वनी कवाड़कर, बनेपारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, खाफिर शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और माखीजा परिवार के सभी सदस्य, पुणे से पंकज कुमार आर्या और प्रियंका वाड़ोदय, जरूर वरुद से बाबा साहेब वाड़ोदय और चंद्रप्रभा वाड़ोदय, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और पिट्टा बजाज। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद के अंत में पेश है अनुराधा पौडवाल की आवाज में साजन फिल्म का ये प्यारा सा गीत। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण की, शब्द रचना है समीर की। इस गीत के फरमाइश करता है गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जेएस नायक, शोभा नायक, चकमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और डागला परिवार के सभी सदस्य। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बेबी निष्कर, तन्मय गजभिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। शांतिनगर भाटापारा छत्तीसगढ़ से मिलोदास, कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत बिरझा और संजना साथी लकी। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनीकर और धीरज सवासेरे। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साजन फिल्म का ये प्यारा सा गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इन सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912, मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी एनआर में संचालित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में एक अवदाब बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्ष

0: अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक कल 8 जुलाई को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में आज संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में नलकूप खनन यानी ट्यूबवेल खनन पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। और मौसम विभाग ने आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ही आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजने को है। प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी।

0: तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
1: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं। इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े

0: करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की।
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है, अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरिनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं, आपको घुमाने की

0: जिम्मेदारी भी मेरी।
1: अच्छा अच्छा कादिर, मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
1: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो।

0: और सुनो कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो, वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह!
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।

0: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
2: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
2: हाँ, जाना है।
0: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा, अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
2: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता,

0: इन नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही, तो बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गपोर हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से

0: हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
1: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर।
1: हाँ।
0: जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
1: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात।
3: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चयन।

कार्यक्रम चयन के आज के अंक में मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो साथी धरती। साथियों, कहते हैं इंसान की आंखें सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वे उन ख्वाबों को भी संजोती है जो उसकी जिंदगी को अर्थ देते हैं। हर सुबह की शुरुआत किसी उम्मीद से होती है और हर रात की खामोशी अपने साथ कुछ अधूरे ख्वाब लेकर आती है। शायद इसी के नाम जिंदगी है, जहां हकीकत और ख्वाब एक दूसरे के साथ चलते तो हैं लेकिन कभी पूरी तरह मिल नहीं पाते। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म तीन देवियां फिल्म के इस गीत के साथ। संगीत दिया है ST बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

साथियों, बचपन में हमारे ख्वाब बहुत छोटे और बहुत सच्चे होते हैं। कभी बारिश में भीगना, कभी आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर उनके साथ उड़ने की कल्पना करना, तो कभी चांद को अपना दोस्त मान लेना। उस उम्र में ख्वाबों की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वे दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी हमें सिखाने लगती है कि हर ख्वाब की एक कीमत होती है, मेहनत, धैर्य, संघर्ष और कभी कभी त्याग। समय के साथ कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ रास्ता बदल लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा ये प्यारा सा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम है आक्रमण।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिख

0: करना है, बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजिए और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: साथियों, जिंदगी एक आईने की तरह है, उसमें हम वही देखते हैं जो सामने होता है, लेकिन ख्वाब उस आईने के पीछे छिपी उस दुनिया का नाम है जहां हम सब कुछ वैसा होता है जैसा हमारा दिल चाहता है। हकीकत हमें ज़मीन पर चलना सिखाती है, जबकि ख्वाब हमें आसमान की ओर देखने की वजह देती है। दोनों में से कोई भी अकेला पर्याप्त नहीं है। सिर्फ हकीकत हो तो जीवन सूखा लगता है, और सिर्फ ख्वाब हो तो कदम भटकने लगते हैं। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये एक और खूबसूरत सा गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। संगीतकार हैं जतिन ललित और गीतकार हैं आनंद पक्षी।

साथियों, कई बार हम अपने ही कुछ ख्वाबों को समय की अलमारी में बंद कर देते हैं। जिम्मेदारियों की धूल उन पर जम जाती है, लेकिन वह कभी पूरी तरह मरते नहीं। किसी पुराने गीत की धुन, किसी तस्वीर की मुस्कान, किसी परिचित रास्ते की खामोशी या किसी अपने की आवाज़ उन्हें फिर से जगा देती है। तब एहसास होता है कि ख्वाब उम्र के नहीं, दिल के होते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में भी ख्वाब बनकर आते हैं। उनकी मौजूदगी दुनिया के रंगों में भर देती है और उनकी यादें लंबे समय तक हमारे भीतर उजाला करते रहती हैं। भले ही वे हमारे साथ न रहें, लेकिन उनसे जुड़ी यादें हमें यह यकीन दिलाती हैं कि सुंदर रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे बस यादों का रूप ले लेती हैं। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म सिर्फ तुम से। आवाज़ है अलका याग्निक की, संगीत यह है नदीम श्रवण ने और शब्द रचना है समीर की।

साथियों, टूटे हुए ख्वाब अक्सर एक नया इंसान गढ़ते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत भी हो सकती है। ख्वाबों का सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। वे अमीर गरीब, छोटे बड़े, शहर गांव, किसी में फ़र्क नहीं देखते। वे हर उस दिल में जन्म लेते हैं जहां उम्मीद अभी भी ज़िंदा है। इसलिए अपने ख्वाबों को कभी छोटा मत समझिए। एक छोटा सा सपना भी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसी के साथ सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपता की आवाज़ में फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो की, इस फिल्म से।

साथियों, जिंदगी सिर्फ सांसों का सफर नहीं बल्कि उन सपनों की कहानी भी है जिन्हें हम जीने की हिम्मत रखते हैं।

कुछ ख्वाब पूरे होकर मुस्कुराते हैं और कुछ अधूरी रहकर हमें मुस्कुराना सिखा जाते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम चयन के आज के अंक में बस इतना ही।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले

0: में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सामयिक सुझाव का विषय है मक्के की उन्नत खेती।
2: किसान भाइयों, मक्का विश्व में आर्थिक रूप से तथा पशुओं के लिए चारा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। यह विश्व में सबसे अधिक उपज क्षमता वाली अनाज, इसीलिए इस फसल को अनाज की रानी कहते हैं। मक्का उत्पादन सभी राज्यों में किया जाता है। 85% मक्का का उत्पादन खाने के उद्देश्य से किया जाता है। मक्का से रोटी तथा कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। लोगों द्वारा मक्के को भूनकर बड़े चाव से खाया जाता है। मक्के से बच्चों के लिए प्रसिद्ध पॉपकॉर्न बनाया जाता है। मक्का मुर्गी, सुअर तथा अन्य जानवरों के लिए भी भोजन का अच्छा स्रोत है। मक्के में 10% प्रोटीन, 4% तेल तथा 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का में विटामिन ए, बी और विटामिन ई पाया जाता है। मक्के के अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस तथा बढ़वार के लिए 32 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। जल भराव मक्का के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मक्का के लिए जल निकास विशेषकर खरीफ मौसम में बहुत ही जरूरी है। मक्का को 5.50 से 7.50 पीएच तक उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, मक्का के लिए उन्नतशील किस्में जैसे गंगा 01, गंगा 101 तथा रंजीत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। संकुल किस्मों में अम्र, विजय, किसान, सोना, विक्रम तथा ज्वाहर है। सिंचित क्षेत्र में मक्का के साथ मिश्रित फसल के रूप में कई फसल लाभदायक हैं, जैसे गेहूं, आलू, तोरिया, गन्ना, बरसीम तथा चना इत्यादि। मक्का के कुछ महत्वपूर्ण फसल चक्र होते हैं, जैसे मक्का आलू एक वर्षीय फसल चक्र, मक्का गेहूं एक वर्षीय फसल चक्र, मक्का तोरिया गन्ना द्विवर्षीय फसल चक्र, मक्का गेहूं ज्वार गन्ना त्रिवर्षीय फसल चक्र। किसान भाइयों, मक्का की तैयारी हेतु मक्का के लिए दानेदार, अच्छी हवा संचार वाली, नम तथा खरपतवार रहित खेत होनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए, जिससे 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी गीला पड़ जाए, जिसके बाद से 2-3 बार डिस्क हीरो से जुताई करना चाहिए। मक्का के अधिकतम उत्पादन के लिए पौधों की संख्या 60 से 65 हजार होनी चाहिए। मक्का में पौधों की संख्या नियत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मक्का खाली स्थान को भर नहीं पाता, जिसमें कंसे निकलने की प्रवृत्ति नहीं होती। मक्का में पौधे से पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पंक्ति 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। हाइब्रिड मक्का हेतु बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम तथा संकुल मक्का हेतु 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर होना चाहिए। जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां मक्का मानसून आने के 2 हफ्ते पहले लगा देना चाहिए, ताकि वर्षा के समय जड़ गहराई तक पहुंच सके और पौधों को पूरा सहारा दे सके। गर्मी में मक्का मार्च अप्रैल में लगाई जाती है। मक्के के लिए खाद एवं उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मक्का के खेत में डालना चाहिए। अनुशंसा के अनुसार संकर मक्का के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मिट्टी परीक्षण में जहां जस्ते की कमी हो उन खेतों में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का छिड़काव वर्षा के पूर्व खेतों में मिला देना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा अंकुरण के लगभग 1 माह बाद देना उपयुक्त रहता है। मक्का फसल पानी की अधिकता तथा नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। मक्के के फसल में पानी का भराव कभी

0: भी नहीं होना चाहिए। माझा निकलने के समय मक्का को पानी अवश्य ही देना चाहिए। खरीफ मौसम में पर्याप्त वर्षा होने के कारण खरपतवार की संख्या ज़्यादा होती है। मक्के के फसल में मक्का लगाने पूर्व इंट्राजीन या सीमाजीन की मात्रा 1 से 1.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हल्की मृदा में तथा 1 से 1.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भारी मृदा में 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल बोने के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। बीज बोने के 15 से 20 दिन के बाद खेत में निंदाई गुड़ाई करने से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। खेती की उन्नत तरीके अपनाने से संकर किस्मों में 50 से 60 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर तथा संकुल किस्मों में 45 से 50 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। वर्षा आधारित फसल में संकर किस्मों से 20 से 25 क्विंटल तथा संकुल किस्मों से 15 से 20 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो इस तरह किसान भाइयों मक्का की उन्नत खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सामयिक सुझाव का विषय था मक्के की उन्नत खेती। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का हमारे आज के घर आंगन कार्यक्रम में। आपके साथ आज के क्रम में मैं हूं विनीता। स्वीकार कीजिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। बहनों, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, जिम्मेदार बने और जीवन में सफल हों। लेकिन अक्सर एक सवाल सामने आता है कि क्या अनुशासन का मतलब केवल डांटना या सजा देना है, या फिर अनुशासन प्यार, संवाद और सही मार्गदर्शन का नाम है। श्रोताओं, अनुशासन का अर्थ केवल नियम बनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को सही गलत की समझ देना भी है। जिम्मेदारी का एहसास कराना और आत्मनियंत्रण सिखाना भी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों में अनुशासन सबसे पहले माता पिता के व्यवहार से ही आता है और बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। अगर माता पिता स्वयं समय का पालन करें, बड़ों का सम्मान करें, शिष्टाचार से अपनी बात रखें, तो बच्चे भी इन्हीं आदतों को अपनाने लगते हैं। उनमें अनुशासन विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम घर में कुछ स्पष्ट और सरल नियम बनाएं। गलती होने पर डांटने के बजाय समझाएं, अच्छा काम करने पर उनकी तारीफ करें, साथ ही साथ बच्चों की बातें भी सुने। श्रोताओं, अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चा ज़िद करता है या गलती करता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, या जिस चीज़ की वो ज़िद कर रहा है हम उसे वो चीज़ तुरंत दे देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। अगर हम ज़िद पर बार बार चिल्लाएं या मारें तो बच्चों में डर, तनाव और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति में धैर्य, संवाद और सकारात्मक मार्गदर्शन रखना बेहद ज़रूरी है। गांव हो या शहर, हर परिवार में बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है। उनके साथ खेलें, पढ़ें, उनकी बातें सुनें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अपने पेरेंट्स की बातों को आसानी से मानने लगेंगे। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में भी परिवार के साथ भोजन करना, कहानी सुनाना, पूजा पाठ करना, साथ बैठकर दिन भर की बातें करना बच्चों में अनुशासन और पारिवारिक संस्कार विकसित करता है। बहनों, याद रखें, अनुशासन डर से नहीं बल्कि विश्वास से आता है। बच्चे को ये महसूस हो कि उसके माता पिता उसके सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। यदि बच्चा गलती करे तो उसे ये बताएं कि गलती क्या थी और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। यही सकारात्मक अनुशासन है। श्रोताओं, बच्चों की परवरिश एक जिम्मेदारी के साथ एक सुंदर अवसर भी है। प्यार, धैर्य, संवाद और अच्छे संस्कार, यही अनुशासन की असली नींव हैं। आज जो आदतें हम अपने बच्चों में विकसित करेंगे वही उनके उज्जवल भविष्य का आधार बनेंगी। तो इन बातों का खास

ख्याल रखें और आज के इस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम बच्चों को अनुशासन के साथ प्यार, आत्मविश्वास, हर कुछ उनके अंदर विकसित करें ताकि वो आगे भविष्य में एक अच्छे नागरिक भी बने। इन्हीं बातों के साथ आइए सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म ममता से। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का हमारे आज के आईना क्रम में। और आईना क्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, संघर्ष अगर हौसलों से बड़ा ना हो तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिलती है। पद्मश्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी देशमाने की प्रेरक कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। आज उन्हें देश की अग्रणी कैंसर सर्जनों में गिना जाता है, लेकिन अगर उनके बचपन की बात करें तो उनका बचपन बेहद कठिनाई में गुजरा और परिवार झुग्गी में रहता था। जीवन यापन के लिए सब्जियां बेचते थे और आर्थिक तंगी इतनी थी कि MBBS की पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए उनकी मां ने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। कन्नड़ माध्यम से पढ़ाई करने वाली विजयलक्ष्मी पहले वर्ष में अंग्रेजी भाषा की कठिनाई के कारण असफल हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत कर अंग्रेजी सीखा और दोबारा परीक्षा दी और आगे चलकर पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन कैंसर मरीजों की सेवा को समर्पित कर दिया। करीब 35 वर्षों तक उन्होंने हजारों मरीजों का इलाज किया, कैंसर जागरूकता अभियान चलाए, शोध कार्य किए और जरूरतमंद मरीजों की हर संभव मदद की। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने समाज सेवा और गरीब मरीजों के उपचार का कार्य जारी रखा। देश के प्रति उनके इसी असाधारण योगदान और निस्वार्थ चिकित्सा सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। श्रोताओं, डॉक्टर विजयलक्ष्मी देशमाने की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर लक्ष्य सेवा और समर्पण हो तो सफलता स्वयं रास्ता बना लेती है।

अब बात करते हैं महज 8 वर्षीय तछवी वाघानी की। गुजरात के अहमदाबाद की महज 8 वर्षीय तछवी वाघानी ने अपनी असाधारण प्रतिभा से दुनिया भर का ध्यान खींचा है। तछवी ने 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई के नीचे से 10 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तछवी ने यह शानदार उपलब्धि 1 मार्च 2026 को हासिल की और ख़ास बात यह है कि उन्होंने केवल 4 साल की उम्र से स्केटिंग सीखना शुरू किया। आज भी वो अपने कौशल को निखारने के लिए रोज़ करीब 4 घंटे अभ्यास करती हैं। रिकॉर्ड बनाते समय तछवी ने जमीन से महज 16 सेंटीमीटर ऊपर लगे बैरियर के नीचे बिना किसी स्पर्श के 10 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की। इतनी कम ऊंचाई पर संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन तछवी ने अपनी मेहनत और एकाग्रता से इसे संभव करके दिखाया। यह तछवी का दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 2024 में उन्होंने 25 मीटर लिम्बो स्केटिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उनकी ये उपलब्धि साबित करती है कि उम्र नहीं बल्कि लगन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही सफलता की असली पहचान है। उनकी ये कामयाबी देश के लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा है।

अब बात करते हैं पद्मश्री से ही सम्मानित एक महिला किसान की। कभी घर चलाने के लिए साइकिल पर अचार और मुरब्बा बेचती थीं, आज वही राजकुमारी देवी पूरे देश में किसान चाची के नाम से मशहूर है। संघर्ष, मेहनत और सीखने की ललक ने उन्हें पद्मश्री सम्मान तक पहुंचा दिया और हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनाया। ये सिर्फ एक महिला किसान की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, हौसले और बदलाव की मिसाल भी है। महज 15 साल की उम्र में शादी, ताने और आर्थिक संघर्ष के बावजूद बिहार की राजकुमारी देवी ने हार नहीं मानी और साइकिल पर अचार बेचना शुरू किया और साथ ही फिर किसान श्री और पद्मश्री तक इनका ये सफर इन्हें ले गया। इनकी ये कहानी महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने अपने संघर्ष को हजारों महिलाओं की ताकत बनाया। कभी जिसके पास अपनी उपज बेचने के लिए बाजार नहीं था,

आज उनके बनाए मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद देश के कई हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। खेती और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

अब बात करते हैं तमिलनाडु की निथ्या राजा पांडे की। तमिलनाडु के थेनी जिले के छोटे से कस्बे बोड़ी में पली निथ्या ने अपने दादा दादी को बेसन, गुलाब की पंखुड़ियाँ और जड़ी बूटियों से घरेलू स्किन केयर प्रोडक्ट बनाते देखा था। यही परंपराएं उनके दिल में बस गईं। पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर रहने पर भी वो इन्हीं ही प्राकृतिक नुस्खों पर निर्भर रहने लगी। समय के साथ परिवार ने ये कारोबार बंद कर दिया और मार्केट में केमिकल वाले प्रोडक्ट बढ़ गए। इन्हें समझ में आया कि ये ज्ञान खोता जा रहा है। अपने पति राजा पांडे की बिजनेस समझ और साझा विजन ने इन्हें नई दिशा दी और साल 2018 में सिर्फ 7,000 रुपए से दोनों ने मिलकर अकाथिया नेचुरल शुरू किया। और शुरुआत सिर्फ एक छोटे किचन से हुई, जहां वो बेसन, गुलाब की पंखुड़ियाँ, नारियल का दूध और जड़ी बूटियाँ मिलाकर स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने लगी। पहले 50 साबुन के बैच से शुरुआत हुई और आज 21 प्रोडक्ट के साथ वो भारत और अमेरिका समेत कई देशों में सप्लाई कर रही हैं। अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रोज़ाना 3,000 साबुन बनाने की क्षमता रखती है। 7,000 रुपए से शुरू हुई कंपनी का आज हर महीने 12 लाख रुपए का टर्नओवर है। कंपनी अब 2 करोड़ का ब्रांड बन चुकी है। महिलाओं की इन चंद प्रेरणास्पद कहानियों के साथ आज का आईना क्रम बस यहीं तक।

श्रोताओं, अभी हम थे आईना क्रम में और अब वक्त हो चला है कि हम चलें हमारे क्रम घर आंगन मेल में। और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के घर आंगन मेल में। और आज के इस क्रम में बहुत सारे मेल आपके हमें मिले हैं, तो चलिए देर न करते हुए पढ़ते हैं आपके मेल। पहला मेल हमें भेजा है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि, रुद्राणी, कृष्णा और चंचल केवट। दतरेंगी भाटापारा से भारती वर्मा, शकुन, रुक्मणी, रजनी, प्रतिमा रानी, द्रौपदी, धनेश्वरी और कुमारी पायल वर्मा। कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी गोस्वामी, नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर, दिनेश वर्मा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से श्रीमती अनीता बाई खटसे और प्रियंका खटसे। ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से पूनम वर्मा, ज्योति, दीपेश और शिवांश वर्मा। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत, जिसमें आवाज़ें हैं किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें लिख कर भेजी है कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, पोटिया कला दुर्ग से श्रीमती सुजाता साहू, संजय, सीमा, सोनू और गुड़िया, और कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद, छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी, अजय देव, तुषार देव, मास्टर अल कबीर, बन बघेरा राजनांदगांव से आशा सारवा, अंजलि, करीना, नीरज, नीलेश और योगेश सारवा, किकिर मेटा बेलिहारी पाटन दुर्ग से रुक्मणी शर्मा, संतोष शर्मा जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले और वसुधा वज्र सेन। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का ये गीत, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी थी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, और मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपने सुना अभी फिल्म प्यासा सावन का ये गीत। अब वक्त हो गया है कि आज के घर आंगन मेल से हम विदा लें, और घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम घर आंगन से भी आपसे विदा लेना होगा। तो मुझे यानी विनीता को अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 होने को है। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में मैं आज आपके साथ हूं, आपके रेडियो साथी धरती। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बड़े दिल वाले फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। अकोला से सुरेश राय और अलका राय, दरियापुर बाभली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले, ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत और बाबू भाई, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य, कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागुने, पार्थ हागुने और हागुने परिवार के सभी सदस्य, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष, डुमरा बिहार से अस्मा परवीन, दुखना रानी, सदफ, अर्जू अली, भाई अंसारी, फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफसरी मोगा और अहमद मोगा, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आरजू फिल्म का ये प्यारा सा गीत। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और गीतकार हैं हसरत जयपुरी। इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं यूनिवर्सिटी कैंपस हनोई वियतनाम से प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, राजकुमारी डॉक्टर स्वर्णलता युगेन, चिरंजीव और आदेश कुमार, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, हसमानाज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक मोनू उन्नति घनसानी, कीरत राय वाधवानी, प्रतीक कुमार साहू और माखीजा परिवार के सभी सदस्य। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त और चेतन, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार, गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला गीत आप सभी की पसंद पर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुरलकर, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरीन नेताम, कुसुम नेताम, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, अनम यशफ अब्बासी, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीरभारी, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर, लोरमीग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, वैष्णव कॉलोनी सुनावत से मोहम्मद शादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलतमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्री, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत। संगीत दिया है जतिन ललित ने और शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म चश्मे बद्दूर से। आवाज है हेमंत शुक्ला और यशोदास की। संगीतकार हैं राजकमल और गीतकार हैं इंदु जैन। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है सरगुजा मैनपाट छत्तीसगढ़ से अजीता पॉल, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा और मिश्री देवी साहू। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण सोनी, पारस और प्रतिमा देवी। बिहार से शंकर देव जैटोलिया, प्रभा जैटोलिया। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी। खुर्जा यूपी से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। 6667 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता। दिव्यांग कमेटी से छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, अंबिका प्रसाद, केसरवानी, अजय ओगेरे, घनश्याम देवांगन, भूषण तांडी, भारती, दिलीप कुमार, राखी डहरिया और लालू प्रसाद उइके। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रविंद्र कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मुन्ना गुरकीरत, राहुल गुरशब्द सिंह, राहुल। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवन सिंह पैकरा, घुर्नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर चश्मे बद्दूर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन की और शब्द रचना है हसरत जयपुरी की। इस गीत की फरमाइश करता है फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, आलिया और शबा अंसारी, कुंडलेश्वर वाड़ी खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती, जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद सरजाल और उनके परिवार के सभी सदस्य, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लूमा और डॉक्टर ईशानी, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, प्रोफेसर कॉलोनी दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और नसरीन परवीन, लच्छनपुर जिला बड़ौदा बाजार से रामजी

साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर और सदानंद मंदुरकर। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की

0: साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे

0: 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजातीय समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री

0: मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं गैर फिल्मी गीतों और कसलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास की गाए इस गजल के साथ। शायर हैं मुमताज़ राशिद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत। संगीत और गीत लिखा है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में ये गीत। संगीत दिया है भूषण दुआ ने, गीत लिखा है नुसरत पत्र ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अदनान सामी का गाया ये गीत। गीतकार हैं समीर, माफ कीजिएगा, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी।

अदनान सामी और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम गीत कंधा में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। सभा समाप्ति से पूर्व आइए एक नज़र डालें आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। लोकगीत के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी और सरगुजिया लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनते हैं शाम 6:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा में शाम 7:05 पर आप सुनेंगे चंद गजलें। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। साथ ही शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 8 बजे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे हम लेकर आएंगे आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आज शाम 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज

0: के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोरपिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, जिनिया, कनकपुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड़, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढा, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये साजापानी, गट्टीबुड़ा, करडेगा, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, गेदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये तौलीपाली, धोबनीमार, बैगामार, पीड़िया, बोतली, सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, औराई, बरबसपुर, मुरुमडी, छताल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो चुके हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। श्रोताओं, भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है।

कहते हैं प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा और भक्ति से चलें तो बड़ा सीधा। विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास। नज़रों से देखें तो कण कण में और अंतर मन से देखें तो जन जन में।

भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना दिव्यांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति न ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। न ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। न ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, ये एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। युवा श्रोताओं के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की शाम में। तो चलिए करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, कभी कभी कुछ नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते, वे करोड़ों दिलों की धड़कन में बस जाते हैं। कुछ लोग उम्र से बड़े नहीं होते पर अपनी साहस से अमर हो जाते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही जांबाज की कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसा बेटा जिसने अपनी आखिरी सांस तक तिरंगे की आन बान शान की रक्षा की, एक ऐसा सैनिक जिसकी आवाज़ आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है, ये दिल मांगे मोर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की। साल 1999, कारगिल की बर्फीली चोटियाँ, दुश्मन ऊंचाइयों पर था और हर कदम पर मौत से सामना था, पर कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए सबसे ऊंची चीज़ थी भारत का तिरंगा। इन्होंने पॉइंट 5140 पर विजय हासिल की और जीत का संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर, जो सिर्फ एक वाक्य नहीं था बल्कि उस जवान का जज्बा था जो हर जीत के बाद भी देश के

कदम पर मौत से सामना था, पर कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए सबसे ऊंची चीज थी भारत का तिरंगा। इन्होंने पॉइंट 5140 पर विजय हासिल की और जीत का संदेश दिया। ये दिल मांगे मोर जो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि उस जवान का जज्बा था जो हर जीत के बाद भी देश के लिए एक और चुनौती स्वीकार करने को तैयार था। दोस्तों, कैप्टन साहब की पहचान सिर्फ इनकी बहादुरी ही नहीं, इनकी दरियादिली भी है। 7 जुलाई 1999 को अपने साथी की जान बचाने के लिए अपने जान की परवाह किए बिना ही कैप्टन बत्रा दुश्मनों के सामने कूद पड़े। साथी की जान तो बच गई, पर भारत माँ का ये वीर सपूत हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, मौत हर इंसान की होती है, पर कुछ लोग मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। वे तस्वीरों में नहीं, प्रेरणा बनकर जीते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा इन्हीं अमर वीरों में से एक हैं। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने परिवार के साथ हंसते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस आज़ादी की कीमत हमारे वीरों ने अपने खून से चुकाई है। तो दोस्तों, आइए आज सिर्फ 2 मिनट का मौन नहीं, बल्कि एक संकल्प लें। जहां भी तिरंगा दिखे, उसे सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि उन अनगिनत वीरों का सपना समझें। देश से प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से करें। अपने काम को ईमानदारी से करना भी राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है। दोस्तों, कैप्टन बत्रा हमेशा अपने दोस्तों से कहा करते थे, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। और कैप्टन बत्रा ने दोनों ही कर दिखाया। तो आज 7 जुलाई को हमारे शेरशाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि पर आइए सुनते हैं दर्शन रावल की आवाज में फिल्म शेरशाह का ये गीत। गीत लिखा है रश्मि विराग ने, संगीत है जावेद मोहसिन का।

0: दोस्तों अभी आपने सुना दर्शन रावल की आवाज़ में फिल्म शेरशाह का ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं हमारे ट्यूसडे स्पेशल प्रोग्राम युवा कलाकार की ओर, जिसमें आज आप सुनेंगे सिंगर नीलम पैंकरा से प्रियम सिंह की बातचीत।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रम युवा कलाकार में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी प्रतिभाशाली गायिका जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम उन्हीं से उनका परिचय।
2: नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मैं नीलम पैकरा सीतापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी आपका हमारे क्रम युवा कलाकार। नीलम जी सबसे पहले अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: मेरा नाम नीलम पैकरा है और मैं सीतापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। अभी मैं जो है छत्तीसगढ़ी लोक गायिका के नाम से जो है पहचान बना रही हूँ, छत्तीसगढ़ी गीतों के माध्यम से लोगों को अपना आवाज सुना रही हूँ।
1: नीलम, सिंगिंग का शौक कब से था?
2: सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। उस वक्त जो भी आता था, जैसा आता था, जितना आता था, मैं सुनती थी और गाती थी, और वहीं से जो है मेरा शौक बढ़ता चला गया। मतलब बचपन में जैसे एक ये भी रहता है कि घर परिवार के लोग बच्चे को कुछ लालच दे के काम करवाते हैं, तो वैसे मेरे घर के लोग मुझे पैसे का लालच दे के मुझसे गाना गवाते। समय के साथ जो है मैं आगे बढ़ी और समय के साथ मेरा शौक भी बढ़ता चला गया।
1: जी जी, नीलम जी, संगीत की दुनिया में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: जैसे कि मैंने बताया कि मुझे गायकी का शौक बचपन से ही था और मैं उस टाइम पे बहुत गाने सुनती थी। छोटी थी तब से ही मैं बहुत गाने सुनती थी और हमारे जो सीतापुर में जैसे कहीं बाहर से कलाकार आते थे प्रोग्राम देने के लिए, जागरण ऑर्केस्ट्रा वगैरह, तो मैं बहुत सुनती थी उनको। अगर कार्यक्रम जब से शुरू हुआ तब से बैठे बैठे मैं सिर्फ उनके कार्यक्रम को देखती सुनती थी। और उस वक्त से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, इनके जैसा करना है। और उसी वक्त से जो है मैं अपना मतलब काम वगैरह का ऐसा लगता था कि मुझे करना चाहिए, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है क्योंकि मैं सामने वाले के जैसा बनना चाहती थी।
1: नीलम, आपके परिवार से किसी का म्यूजिकल बैकग्राउंड रहा है?
2: नहीं, मेरे परिवार में कोई संगीत से नहीं जुड़े हैं। ये मेरे खुद का मतलब पैशन है, मैं खुद संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ।
1: जी नीलम जी, आपको पहली बार कब लगा कि आप सिंगिंग को अपना करियर बना सकती हैं?
2: पहली बार मुझे तब लगा कि मैं सिंगिंग को अपना कैरियर बना सकती हूँ जब लोगों ने मेरी आवाज को पसंद करना शुरू किया, जब मैं गाने गाकर लोगों से अच्छा रिस्पांस पाती थी और उनका प्यार मिलता था, तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरी आवाज सिर्फ शौक नहीं, मेरी पहचान भी बन सकती है। और लोगों ने मुझे बोला कि आप इसमें अपना कैरियर बना सकती हैं, आपके लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो उसी दिन से मैंने तय किया था कि मैं सिंगिंग में लगातार मेहनत करूंगी और इसी में अपना कैरियर बनाऊंगी।
1: जी जी नीलम जी, नीलम जी जितने भी कलाकार होते हैं उन सबके जीवन में कोई ना कोई चुनौतियां होती है। नीलम, आपके करियर के शुरुआत में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
2: चुनौतियां तो बहुत आई मेरे जीवन में, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं होता जिस काम को अगर आप करना चाहो और उसमें समस्याएं ना आए। और संगीत तो मेरे लिए ऐसा था कि मेरे परिवार में तो वैसे भी कोई इस बैकग्राउंड से नहीं थे। मैंने शुरुआत किया था तो मुझे लोग ताना मारते थे कि कैसे पढ़ाई लिखाई छोड़ के नाच गाना में जा रही है। मेरे से ज्यादा मेरी माँ को लोग सुनाते थे कि अपनी बेटी को कैसे छोड़ दिए हैं, मतलब इनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगवाना चाहिए। इस टाइप का मुझे कई सारा बात सुनने को मिलता था। तो मेरी माँ, मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो हमारे आसपास हमारे जो समाज के लोग होते हैं उनकी बातों से मेरी माँ त्रस्त हो जाती थी। तो मेरी माँ मतलब एकदम डिमोटिवेट हो जाती थी, तो वो मुझे मना करती थी कि नहीं, तुमको पढ़ाई लिखाई करना है। एक बार एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में मतलब ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, सिंगिंग कंपटीशन, जिसमें मैं विनर थी। तो उसमें ना मुझे मतलब सम्मान समारोह के लिए बुलाया गया था जशपुर पंशाला में। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मैं ऑनलाइन ऑडिशन दी थी, उसमें मैं जीती हूँ, तो वहाँ पे बुला रहे हैं सम्मान देने के लिए। और

0: फिर ये था कि मैं अकेले जा भी नहीं सकती थी, तो मैंने अपने अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को भी बोला कि कोई मेरे साथ चलोगे क्या, तो उनके घर के लोग क्या बोले कि इसके साथ मत जाने देना, इसको पता नहीं कहाँ जा रही होगी, क्या कर रही होगी, इस टाइप का बात हुआ था। मैं उस टाइम पे फील करी थी कि मेरे काम के विपक्ष में इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं, तो मैं उस वक्त पे मैं हार नहीं मानी, अपनी माँ को मैं बोली कि मुझे जाना ही है। तो वो जिद के वजह से मैं वहां तक गई जसपुर पंचशाला में, और वहां हजारों के बीच में मुझे सम्मान मिला था, कंवर समाज विकास समिति जसपुर पंचशाला के द्वारा मुझे सम्मान मिला था। और जो भी मैंने वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी, लोगों ने बहुत सराहा, बहुत आशीर्वाद मिला।
1: जी नीलम जी, चुनौतियाँ तो जीवन का एक हिस्सा ही है, चुनौतियाँ तो लगी ही रहती हैं। नीलम, एक सिंगर के रूप में आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या आप नर्वस थी और ऑडियंस का रिएक्शन कैसा था?
0: जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने बताया जशपुर पंचशाला में जब मुझे सम्मान समारोह के लिए बुलाया गया था, तो वहीं से मुझे पहला प्रोग्राम का ऑफर आया था जशपुर दुलदुला से, एक स्वदेशी मेला कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस होना था। और सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी, म्यूजिक सिस्टम, स्टेज, माइक, ऑडियंस, ये सारा चीज़ मेरा बचपन का सपना था जो अब जाके पूरा हो रहा था। तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, मतलब जो चीज़ें मैंने देख के सुन के सीखा था उस चीज़ को प्रस्तुत करने का वो टाइम था मेरे लिए, तो बहुत खास था। और वही मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था जशपुर में, और उसके बाद जो है लगातार मैं स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह देना शुरू की थी, क्योंकि वहीं से जो है थोड़ा सा मतलब मेरा पहचान बनना शुरू हुआ था। सोशल मीडिया तो वैसे था ही, वहां से वीडियोस वगैरह चलने लगे, तो उसके बाद मुझे कार्यक्रम के ऑफर भी आने लगे वहीं।
1: नीलम, आप किस तरह के सॉन्ग गाती हैं और सबसे ज्यादा कनेक्ट कब फील होता है आपको, कौन से सॉन्ग गाने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
0: गाने तो वैसे मैं छत्तीसगढ़ी, नागपुरी, हिंदी तीनों ही भाषाओं में मैं गाना गाती हूँ, लेकिन डिवोशनल सॉन्ग जब मैं गाती हूँ तो बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है। और क्योंकि मैं गाना लिखती भी हूँ, तो मैं जब अपने लिखे हुए गानों को जब मैं खुद गाती हूँ, तो वो जो भाव होता है मेरे दिल से जुड़ा हुआ होता है। और भक्ति गाना होता ही ऐसा है कि उसमें इंसान अपने भावों को व्यक्त करता है, तो मैं भक्ति गाना से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ।
1: नीलम, आपने कहा कि आप डिवोशनल सॉन्ग गाती हैं, उसमें से कुछ दो चार लाइन हमारे श्रोताओं के लिए भी अगर आप गाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, ये जो गाना है मैंने अपने पिता के लिए लिखा था, तो ये गाना मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और ये जो गाना है मैं दो चार लाइन आपको सुनाना चाहूंगी।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए गाया है नीलम जी। नीलम, आपके लिए सिंगिंग सिर्फ प्रोफेशन है या इमोशन भी है?
1: सिंगिंग मेरे लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये मेरे लिए एक भाव है, इमोशन है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं गाने लिखती भी हूँ, तो मेरी जो मन स्थिति होती है उसको मैं शब्द देती हूँ, संगीत देती हूँ। तो ये मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के लिए तो इंसान कई फील्ड चूज कर सकता है ना। लेकिन मैंने यहाँ अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए मैंने संगीत को चुना था, तो ये बहुत ज्यादा दिल से जुड़ाव महसूस करती हूँ, ये बहुत भावपूर्ण है मेरे लिए।
0: नीलम, सोशल मीडिया ने आपकी जर्नी में कितना योगदान दिया?
1: सोशल मीडिया की अगर बात करूँ तो अगर आज मेरी जो भी पहचान है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की देन है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं कुएं की मेंढक बन के रह जाती। क्योंकि अब कमरे के अंदर तो हर कोई गाना गाता है, लेकिन वो आवाज, वो मेरा भाव लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो सोशल मीडिया के जरिए मैंने अपने भावों को, अपने गीतों को दुनिया के सामने लाया, लोगों ने पसंद किया, और आज कहीं ना कहीं, जैसे अगर कुछ लोग ही सही अगर मेरे गानों को पसंद करते हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए ही है जो इतने सारे लोग मेरे से जुड़ पाए हैं।
0: आपको आपका पहला वायरल वीडियो याद है?
1: जी बिल्कुल, गाने तो मैं बहुत पहले से गा रही हूँ, लेकिन पहचान मिलने में मुझे बहुत वक्त लगा था। और पिछले साल ही है एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरा गाना वायरल हुआ था, जो कि मैं खेत में रोपा लगाते वक्त गाते हुए वीडियो बनाई थी। वो मैं दो चार लाइन आप सबको सुनाना चाहूंगी। निहुर निहुर बने ते लगावत रही बे रोपा, बने तो रही लथवे बेनी और खोपा। निहुर निहुर बने ते लगावत रही बे रोपा, बने तो रही लथवे बेनी और खोपा। नहीं देवा

0: मैं दे हूँ रुका, ये गाना इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरा वायरल हुआ था। और इसी गीत के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो लोग मुझे नहीं सुनते थे वो लोग भी मुझे सुनना शुरू किए थे।
1: नीलम, नए आर्टिस्ट जो छोटे शहर से आते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप?
0: मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जिद्दी बनो। जिद्दी इसलिए क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें डीमोटिवेट करने वाले, हमें गिराने वाले हमारे अपने लोग ही होते हैं, हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। तो उन सब की बातों को इग्नोर करके आप अपने आप में एक जिद करो कि मुझे किसी की बातों को नहीं सुनना है क्योंकि आगे मुझे बढ़ना है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य को जो है ना, मतलब जिद जरूरी है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर आज मैं आप सबके सामने अपनी जर्नी शेयर कर रही हूं तो वो जिद के वजह से ही है। अगर उस वक्त पे मैं जिद नहीं करती तो आज नहीं होती यहां पे, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया था लेकिन मैं जिद्दी बहुत थी अपने काम को लेकर कि मुझे अगर सिंगर बनना है तो बनना है, क्योंकि उसके अलावा मैंने कोई सपना देखा ही नहीं था। तो अपने सपने के लिए मैंने जिद किया।
1: नीलम, आपने बताया कि आप गाना लिखती भी हैं और गाना गाती भी हैं। नीलम, आप कोई ऐसा गीत जो आपने लिखा है और जो गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ है उसके कुछ दो चार लाइन अगर हमारे श्रोताओं के लिए आप गाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी बिल्कुल, गाने तो मैंने काफ़ी सारे लिखे हैं और गाए भी हैं और उसमें से वायरल भी कई सारा गाना हुआ है, लेकिन बहुत कम समय में ये जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो गाना बहुत कम समय में वायरल हुआ था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था जिसको मैंने खुद ही लिखा था।

0: दीवाना।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत नीलम जी आपने हमें सुनाया है। नीलम, आपकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, इस बारे में हमें बताइए।
0: देखिए, अभी तक कोई खास अचीवमेंट्स तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे गानों को पसंद करते हैं, मेरी ऑडियंस, वो मेरी उपलब्धियां हैं। मैंने उन्हें कमाया है और उन्हीं की बदौलत जो मैं आगे बढ़ रही हूँ, उन्हीं की देन है। इसके अलावा 2021 में जो है कंवर समाज विकास समिति जशपुर पमशाला के द्वारा मुझे संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया था, और 2024 में जो है कुशम महोत्सव में संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला था। 2025 में जो है श्री तोखन शाहू केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा टीजीबी मीडिया के द्वारा मुझे संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया गया था, और 2025 में ही आदिवासी कंवर समाज विकास समिति रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा श्री विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिला।
1: आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी काम आसान नहीं होता है और बिना शब्द बिना धैर्य के वो पूरा भी नहीं होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके परिणाम के लिए हमें थोड़ा सा सब्र भी रखना आना चाहिए। मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ, भले आज मैं अपने उस मुकाम तक, उस मंजिल तक नहीं पहुंची हूँ जहाँ तक का मैंने सपना देखा है, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत किया था। इसका मतलब यही है कि मेरी मेहनत ने मुझे भले चार कदम ही सही लेकिन आगे बढ़ाया है, और मैं लोगों से जुड़ रही हूँ अपने सपने को लेके, अपने काम को लेके। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सब्र के साथ, धैर्य के साथ और कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैं भी यही आशा करती हूँ कि मैं जो सपना देख के निकली हूँ, आप सबके आशीर्वाद और प्यार से मैं जल्दी उस मुकाम को हासिल करूँ।
1: जी जी बिल्कुल नीलम जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज के युवा कलाकार में हमारे साथ थी हमारी एक युवा साथी नीलम पैकरा जी। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज के क्रम युवा कलाकार से। तो इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी आपने क्रम युवा कलाकार में सुना सिंगर नीलम पैकरा से प्रियम सिंह की बातचीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं विशाल ददलानी और नवराज हर्ष की आवाज में फिल्म मुबारका का ये गीत। शब्द रचना है कुमार की, संगीत दिया है अमाल मलिक ने।
3: तेरा नाम लेके कम कर दे शुरू चढ़ दी कल।

दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और कैरलिसा मोंटालियो की आवाज में फिल्म बेफिक्रे का ये गीत, गीतकार जयदीप सहनी, सुरों से सजाया है विशाल शेखर ने।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म बेफिक्रे का ये गीत। इसी के साथ वक्त हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर और ऐतिहासिक क्रम समय की दास्तां। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत। आपकी दोस्त शालिनी चौबे को नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के

0: बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है नियत, संकलन और वाचन स्वर है धरती प्रिया का।
2: मनुष्य के जीवन में अनेक गुणों का महत्व होता है, लेकिन यदि किसी एक गुण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है तो वह है नियत। नियत अर्थात हमारे मन की भावना, हमारा उद्देश्य, हमारे कर्मों के पीछे छिपा वास्तविक भाव। कोई भी कार्य केवल उसके परिणाम से महान नहीं बनता, बल्कि उसे करने की नियत ही उसकी असली पहचान बनती है। अच्छी नियत साधारण से साधारण व्यक्ति को भी सम्मान दिला सकती है, जबकि बुरी नियत बड़े से बड़े व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी नियत वैसी नियति। नियत केवल दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमारे चरित्र, संस्कार और सोच का भी दर्पण होती है। जिस व्यक्ति की नियत साफ होती है, उसके व्यवहार में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास स्वतः दिखाई देता है। ऐसे लोग दूसरों का भला सोचते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यही कारण है कि समाज में ऐसे लोगों का सम्मान सदैव बना रहता है। आज के समय में अक्सर लोग किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पद, धन या बाहरी व्यक्तित्व से कर लेते हैं, जबकि वास्तविक पहचान उसकी नीयत से होती है। यदि किसी के पास अपार धन संपत्ति हो, लेकिन उसकी नीयत दूसरों का हित करने की हो, तो वह कभी भी

0: सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी यदि नेक नियत रखता है तो वह लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लेता है। अच्छी नीयत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह विश्वास पैदा करती है। परिवार हो, मित्रता हो या कार्यस्थल, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। और विश्वास तभी बनता है जब नीयत साफ हो। जिस व्यक्ति की बातों और कार्यों में ईमानदारी होती है, लोग उस पर बिना संकोच भरोसा करते हैं। इसके विपरीत यदि नीयत में छल, स्वार्थ या धोखा हो तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे उनकी नेक नीयत रही है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का विकास नहीं बल्कि समाज और मानवता की सेवा को बनाया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मानपूर्वक लिया जाता है। किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसके नागरिकों की नीयत ईमानदार और सकारात्मक हो। कई बार हमें जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं जहां कोई देख नहीं रहा होता और वहीं हमारी नीयत की वास्तविक परीक्षा होती है। यदि हम केवल लोगों के सामने अच्छे बने और अकेले में गलत कार्य करें तो वह सच्ची अच्छाई नहीं है। सच्ची नीयत वही है जो हर परिस्थिति में समान रहे। ईमानदारी केवल दूसरों को दिखाने की वस्तु नहीं बल्कि स्वयं के चरित्र का हिस्सा होनी चाहिए। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में सफलता की दौड़ ने कई लोगों को केवल परिणामों तक सीमित कर दिया है। कुछ लोग सफलता पाने के लिए गलत रास्ते अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन ऐसी सफलता क्षणिक होती है। अच्छे उद्देश्य और साफ नीयत से प्राप्त सफलता ही स्थायी होती है और मन को सच्चा संतोष देती है। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छी नीयत का महत्व भी सिखाना चाहिए। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक होगी, उसका उद्देश्य नेक होगा और उसके कर्म ईमानदार होंगे, तभी वह एक अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बन सकेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि नीयत वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे व्यक्तित्व को दिशा देती है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी नीयत से अर्जित सम्मान जीवन भर शांत रहता है। इसलिए हमें सदैव अपने मन को स्वच्छ, विचारों को सकारात्मक और उद्देश्य को नेक रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी नीयत और उसके कर्मों से होती है। यही जीवन की सच्ची सफलता और सार्थकता है।
1: नीयत, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, संकलन और वाचन धरती प्रिया का था। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती मां अबले थोड़किन देर बाद मुख्यमंत्री निवास मां हो ही शुरू। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कही ने कि ये बच्छर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही और पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई लकाली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संगीतमय श्रद्धांजलि दे जाही। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पगरेती में अबले थोड़किन देर बाद संध्या 7 बजे नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में शुरू होही। ये बैठक में भाजपा अवैया मानसून सत्र लेके अपन रणनीति तैयार करही। ये बैठक में विपक्ष ढाले उठैया मुद्दा ऊपर गोट बात होए के संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र ले पहली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत आज रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ले भेंट करी। ये दौरान अवैया मानसून सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन समेत आने आने संसदीय विषय मनु पर गोट बात हुई। संगे संग बछर 2026 के उत्कृष्ट विधायक सम्मान पर संभावित नामों पर घलो विचार विमर्श करेगी। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू हो ही, ये सत्र 17 जुलाई तक चली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रगति परियोजना के

0: शुभारंभ करी। एखर उद्देश्य 20,000 ले ज्यादा कृषि उद्यमी और 20,00,000 किसान मन ला सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया ले गोट बात करत श्री चौहान है विकसित भारत के लक्ष्य ला पाए बर कृषि विकास समृद्ध गांव और समृद्ध किसान मन के विकास की जरूरत ऊपर बल दिन। ओमन कही ने कि सरकार ये लक्ष्य ला पाए बर हर संभव कोशिश करत है। श्री चौहान कही ने कि सरकार है प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत 26,000 लघु कृषि उद्यमी मन ला प्रशिक्षित करे के फैसला ले है। ओमन कही ने कि ये उद्यमी एक गांव के कृषि काम में बदलाव लाए बर 100 ले 200 किसान मन के संग मदद करते। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कही ने कि ये बछर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई जाही। ये ट्रेन ला रोज चलाए जावत ट्रेन मन के अलावा अलग ले चलाए जाही। नई दिल्ली में श्री वैष्णव कही ने कि पूरी रेलवे स्टेशन में 30,000 यात्री मन पर अस्थायी व्यवस्था करे जाही। मुख्य सचिव विकासशील है आज मंत्रालय में राज्य शासन के जम्मू विभाग के सचिव मन की बैठक लेके योजना और कामकाज की समीक्षा करी। बैठक में मुख्य सचिव है जम्मू विभाग मन में बैकलॉग के खाली पद मन के भर्ती पर कार्यवाही जल्दी शुरू करे के निर्देश दिन। संगे संग विभागीय सचिव मन उखर विभाग के योजना के काम ला सरलक देख रेख करे बर घलो कहिन। बैठक में मुख्य सचिव है ई ऑफिस लोक सेवा गारंटी नियत निर्णय डैशबोर्ड सुघर छत्तीसगढ़ पीएम प्रगति पोर्टल ई प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल सेवा सेतु ग्रामीण विकास विभाग के योजना पीएम सूर्य घर बिजली समेत आने आने योजना मन के जानकारी ली। प्रदेश के आने आने ग्राम पंचायत मन में आज रोजगार और आवास दिवस के आयोजन करेगी। इखर माध्यम ले गांव वाले मन ला विकसित भारत जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कामकाज के जानकारी देगी। संगे संग पात्र हितग्राही मन ला आने आने जन कल्याणकारी योजना मन के संबंध में घलो जागरूक करेगे ही। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक मन के पंजीयन ई KYC और PM आवास योजना ग्रामीण के तहत बनत आवास मन के कामकाज के समीक्षा करेगी। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बछर पूरा हुए में आयोजित सहकारी सप्ताह के काली समापन होगी। ए मौका में रायपुर में राखे के कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण करी। उमन बताइने कि प्रदेश में करीबन 1300 सहकारी समिति मन के गठन करेगी है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन के सीधा प्रसारण घलो करेगी। कार्यक्रम में बताया गया है कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का वित्त बछर 2025-26 में 216 करोड़ रुपया के फायदा पाए है। कार्यक्रम के सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता घलो संबोधित करें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। वर्षा के मौसम में बिजली ले हो या दुर्घटना मले बचाव खातिर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है लोगन मले विशेष सावधानी बरते के अपील करे है। कंपनी है कही ने कि बिजली के खंभा टूटे तार ट्रांसफार्मर और आने आने विद्युत उपकरण मन ले सुरक्षित दूरी बनाए रखे और एमा कोनो किस्म के छेड़छाड़ झन करे और कोनो मेर बिजली के तार या उपकरण हा टूटे फूटे दिखे तो तुरते एखर बर खबर टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली एप या तीर तखार के वितरण केंद्र मन ला देवे। सरलग होत वर्षा ला देखत कृषि विशेषज्ञ मन हा प्रदेश के किसान मन ला सलाह दे है कि खेत मन में पर्याप्त पानी होए मा मचाई करके धान के रोपाई कराए। तीर्थकार मन नर्सरी नहीं है त किसान मन हा अंकुरित बीजा के लेही विधि ले ड्रम सीडर या छिटकवा विधि ले बुवाई कर सकत है। विशेषज्ञ मन हा कहिने कि मानसून के देरी ले आए के स्थिति किसान मन 125 दिन ले 130 दिन मा पकैया जल्दीच और मध्यम बेरा के धान किस्म के चुनाई कराए। सीधा बोवैया किसान मन ह 15 जुलाई तक अउ रोपा लगाने वाला किसान मन ह

0: 30 जुलाई तक काम पूरा कर लें। कृषि विशेषज्ञ मन ह धान के सीधा बोवाई में खर पतवार नियंत्रण ऊपर विशेष ध्यान दे और रासायनिक उर्वरक के संग हरियर खाद और जैव उर्वरक मल्ला बउरे के आग्रह करे हे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है काली 8 जुलाई के रायपुर के डुमर तराई में नवीन थोक बाजार के नामकरण और लोकार्पण करही। समारोह के पगरैती आवास मंत्री ओपी चौधरी करही। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में करीबन 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित ये आधुनिक थोक बाजार व्यापारी मन के जरूरत ला ध्यान में राखत आधुनिक सुविधा मल्ले बनाए गए हे। ये बाजार रायपुर समेत पूरा प्रदेश के व्यापारिक विकास ला नवा दिशा दे के संग आर्थिक गतिविधि मल्ला घलो नवा गति दी हे। पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाईला काली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच में संगीत में श्रद्धांजलि दे जाहे। संस्कृति विभाग कोती ले राखे गए ये कार्यक्रम मंझनिया 2 बजे शुरू होही। एमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मन शामिल होही। प्रदेश के पद्मश्री और राज्य अलंकरण ले सम्मानित कलाकार मन के संग आने आने लोक कलाकार मन गीत पंडवानी और लोक कला के प्रस्तुति के माध्यम ले स्वर्गीय तीजन बाईला श्रद्धांजलि अर्पित करही। बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण 1 जुलाई ले 31 अक्टूबर तक पर्यटक मन पर बंद रही। वन्य जीव मन के प्रजनन काल ला सुरक्षित राखे बर ये फैसला ले गए हे। फेरे दौरान बलौदाबाजार नव मंडल है बारनवा पारा सिरपुर पर्यटन सर्किट द सेक्रेट गार्ड लैंड के शुरुआत करे हे। ये पर्यटन सर्किट में सिरपुर धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया इको कल्चर सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर के देव हिल्स इको इथेनिक स्टे, कोडार डेड समेत कतकुन मुख्य प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हवे। अब थोरकिन समाचार सार मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में काली 8 जुलाई के नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद के बैठका होही। कृषक विभाग डहर ले ये बच्छर के डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार बर प्रदेश के पात्र किसान मन ले आवेदन मंगाए गए हे। इच्छुक किसान मन 31 जुलाई तक आवेदन कर सकत हे। पुरस्कार ले संबंधित पात्रता नियम और आने आने जानकारी कृषि विभाग के वेबसाइट में उपलब्ध है और मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप पर ऑनलाइन आवेदन करिया के आज आखिरी दिन है। ये योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चुने गए लयिका मल्ला हर एक महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरैती में अबले थोड़किन देर बाद मुख्यमंत्री निवास में होही शुरू। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कहने कि ये बच्चर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही और पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाईला काली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संगीत में श्रद्धांजलि दे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे राम लल्लू पांडे और साथियों के गाए ये भोजपुरी लोकगीत। ये एक विष्णु भजन है।

राम लल्लू पांडे और साथियों को अभी आप सुन रहे थे इस भोजपुरी लोकगीत में। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली में अब आप सुनेंगे राम विशाल और साथियों का गाया ये सरगुजिया लोकगीत। ये एक डढ़रिया कर्मा गीत है।

इस डडरिया कर्मा गीत के साथ ही लोक गीतों का कार्यक्रम गोधूली यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।

बैराग, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम माधुरी में अब आप सुनेंगे फिल्म काला पत्थर से ये गीत। साहिर के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन का, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म काला पत्थर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म गाइड से ये गीत। शैलेंद्र की शब्द रचना है, संगीत है आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म गाइड के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी है। 6:45 हुए हैं, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी

0: मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से किया इंकार। और प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल रायपुर में दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये उद्यमी एक गांव की कृषि कार्य में बदलाव लाने के लिए 100 से 200 किसानों के साथ सहयोग करते हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब से कुछ देर बाद नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में शुरू होगी। इस बैठक में भाजपा आगामी मानसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। इस बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत ने रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान आगामी मानसून सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन सहित विभिन्न संसदीय विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही वर्ष 2026 के उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए संभावित नामों पर भी विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से ग्रामीणों को विकसित भारत जी रामजी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों का पंजीयन, EKYC और PM आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने कहा है कि कुछ उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने उन 129 संदिग्ध उम्मीदवारों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं जिनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में राज्य शासन के सभी विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक लेकर कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना

0: के 5 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह का कल समापन हुआ। इस अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1300 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 216 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सकल लाभ अर्जित किया है। कार्यक्रम को सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री कनीराम और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने भी संबोधित किया। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष के प्रतिष्ठित डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए प्रदेश के पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक कृषक निर्धारित आवेदन प्रपत्र में 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार से संबंधित पात्रता नियम और अन्य जानकारी कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को कल 8 जुलाई को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के पद्मश्री तथा राज्य अलंकरण से सम्मानित कलाकारों के साथ अनेक कलाकार इसमें शामिल होंगे। पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने प्रदेश के किसानों को सलाह दी है कि खेतों में पर्याप्त पानी होने पर मचाई कर धान की रोपाई करें। यदि नर्सरी उपलब्ध नहीं है तो किसान अंकुरित बीजों की लेही विधि से ड्रम सीडर या चिटकवा विधि से बुआई कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि मानसून के देर से आने के कारण किसान 125 से 130 दिन में पकने वाली शीघ्र और मध्यम अवधि की धान किस्मों का चयन करें। सीधी बुआई करने वाले किसान 15 जुलाई तक तथा रोपाई करने वाले किसान 30 जुलाई तक का कार्य पूरा कर लें। कृषि विशेषज्ञों ने धान की सीधी बुआई में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने और रासायनिक उर्वरकों के साथ ही हरी खाद तथा जैव उर्वरकों का उपयोग करने का आग्रह किया है। बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 मोर बिजली ऐप या फिर निकटतम वितरण केंद्र को दे। बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वन्य जीवों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान बलौदाबाजार वन मंडल ने बारनवापारा सिरपुर पर्यटन सर्किट द स्क्रेड गार्लैंड की शुरुआत की है और इस पर्यटन सर्किट में सिरपुर धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया इको कल्चरल सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोना खान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर का देव हिल्स इको एथनिक स्टे, कोडार जलाशय सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार जताए हैं। वहीं एक दो स्थानों

पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कल 8 जुलाई को शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कल 8 जुलाई को रायपुर के डुमरतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रायपुर के बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 338 पदों पर भर्ती की जाएगी। जीएसटी विभाग ने फर्जी अंक सूची के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे दो कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन दोनों कर्मचारियों का चयन वर्ष 2013 में वृत्त के पद पर मेरिट के आधार पर हुआ था। बाद में दोनों की पदोन्नति सहायक ग्रेड 3 के पद पर हुई। जांजगीर के जिला पंचायत के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ महिला आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य सरला कोसरिया मौजूद थीं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की अपील की है। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कल शाम एक मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। और दुर्ग पुलिस ने सुपेला थाना क्षेत्र में 3 युवकों को प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी, 4 मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज रोजगार और आवास दिवस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से किया इंकार। और प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को कल रायपुर में दी जाएगी संगीतमय श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको बता दें हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से बस कुछ ही पलों बाद यानी शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7:20 पर। शाम 7:30 समय होता है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का सजीव प्रसारण। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश पेश करेंगे रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज आपके लिए लेकर आएंगे रात 10:00 और मनभावन पेश करेंगे रात 10:30 पर। ये तो थी हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब जाने कल हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:53 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे 6:05 पर। 6:30 समय होता है कार्यक्रम विचार बिंदु का। रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे 6:35 पर। खेती की बात का प्रसारण समय है 6:45। लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में 7:00 आप सुनेंगे राम लल्लू पांडे।

और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत और विजय सिरदार और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ अलीमा तिग्गा और साथियों के गाए सादरी लोकगीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम पेश करेंगे सुबह 7:15 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का प्रसारण समय है सुबह 7:30। शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वीर वंदन आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे सुबह 9:00। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9:15 पर।

नए तराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 11:05 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है दिन में 12 बजे। एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन पेश करेंगे दिन में 12:30 पर। खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:05 पर। ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम घर गोसाइन का प्रसारण समय है दिन में 1:10 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज पेश करेंगे दिन में 1:40 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ आरंभ होगी हमारी सांध्यकालीन सभा शाम 5 बजे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल से।

रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे बहादुर शाह जफर का कलाम, फनकार हैं मेहदी हसन। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

मेहदी हसन की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो चुके हैं। किसान भाइयों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: और सुभिया राम राम
1: राम राम भोलू भैया।
0: और हमर चौपाल सुनवैया जम्मो श्रोता मन कर बहुत जोहार और बहुत स्वागत।
1: आज के दिन तो हमन एक विशेष कार्यक्रम कर प्रसारण करथन भोलू भैया।
0: हाँ भैया,
1: हेलो किसान वाणी कर, लेकिन ओकर बर तो अभी समय है और हमन तो बात करब मौसम के बारे में भी बात करब। अभी बरखा पानी बढ़िया गिरत है सरगुजा क्षेत्र में, आसपास भी बढ़िया गिरत है। तो भोलू भैया, मैं कहत रहन कि एक महत्वपूर्ण योजना है जिला कथे किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
0: हाँ भाई, बहुत सुघर योजना है परसु भैया। भाई योजना कर माध्यम से हम देखब नहीं तो किसान भैया बहनी मन कर जो समस्या रही भाई, फसल ला एक जगह से दूसरा जगह ले जाए के, ओकर भंडारण करे कर, परिवहन करे कर, ओला बेचे करे कर, सब कर बारे में सरकार हर सूता करके बहुत सुघर योजना बनाईना है।
1: अभी जो नवा नवा तरीका से किसान मन खेती बाड़ी करत है भोलू भैया, और आजकल जो पैकिंग सामान है चाहे ओकर कुछ कुछ सामान बनाए लेते हैं, जैसे हमन देखथन की जो श्री अन्न के बारे में हमन बात करथन तो ओमे ओकर बिस्कुट भी बना लेते हैं, ओकर बेकरी आइटम भी बना लेते हैं, ओकर आटा भी बना लेते हैं। अभी जैसे जो किनवा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है और मैन पार्ट

0: जो टाऊ होल ओकर भी कई कई चीज जो ओमन खाए
1: खाद्य सामग्री बनाता
0: खाद्य सामग्री बनाते तो एकर जो जिला कथे मूल्य संवर्धन एला कथे
1: प्रसंस्करण
0: भी कथे और मूल्य संवर्धन तो कृषि उत्पाद कर जो हमन प्रसंस्करण करथन मूल्य संवर्धन करथन ओकर से कीमत भी बढ़ेल और बढ़िया हमन के आमदनी हो।
1: अब एकर एकठन ऐसे उदाहरण से हम समझ सकत ही परसु भैया कि भाई आलू कर चिप्स आलू बेचना और आलू कर चिप्स बनाए कर बेचना
0: बहुत अंतर
1: दोनों में कितना अंतर है और कितना ज्यादा फायदा है चिप्स बना के बेचे में।
0: सही बात सही
1: वही बात ला प्रसंस्करण करते हैं जेकर कारण हमर सामान कर मूल्य जो है बढ़ जाते हैं जला मूल्य संवर्धन कथन। तो भाई कितना बढ़िया है हमन देखब तो भाई जैसे रउरे बता थी कि मोटा अनाज ला आजकल देखब तो बड़ा बड़ा जो शॉपिंग मॉल जला बड़ा बड़ा शहर में रहते वो जग होगी चाहे हमर शहर का जो दूसर दुकान है वो जग भी वही ला बढ़िया साफ सुथरा करके बढ़िया पैकेज में बनाए के बेचते हैं। तो जहाँ जग कोई सामान हर 50 रुपये किलो है वोला बढ़िया ओकर प्रसंस्करण कर देंगे तो हर 200 रुपया किलो हो जाते हैं। तो किसान भैया बहनी मन कर कितना भाई लाभ कर बात है।
0: तो वही सरकार कहते हैं कि योजना का जो उद्देश्य है कृषि उपज कर बेहतर जो प्रोसेसिंग जो लगते हैं प्रसंस्करण भंडारण और विपणन बनाना ताकि किसान मन कर आमदनी भी हो उपज कर बेहतर मूल्य मिल सके बढ़िया कीमत मिल सके और खाद्यान्न मन कर बर्बादी कम से कम हो।
1: बहुत जरूरी भैया मन देखब तो कई बार जाने अनजाने किसान भैया बहनी मन जेकर उपयोग कर सकता है ओकर पूरा उपयोग नहीं करते हैं ओकर से मन कर लागत बढ़ जाते और कृषि का जो सामान कर हमर अपव्यय है जो खराबी है जला बर्बादी कहब वो हर ज्यादा हो जाते।
0: तो एकर जो पोर्टल है भोलू भैया वो में जाकर के भी जानकारी मिल सकता है। एकर अलावा जो खेत से बाजार तक आधुनिक जो आपूर्ति श्रृंखला विकसित करे कर काम चलता है कोल्ड स्टोरेज हमन शीत गृह जिला बोलते हैं वो सरकार खोलता है बजट में भी प्रावधान रहल वेयर हाउस कर प्रावधान रहल खाद्य प्रसंस्करण इकाई बनता है हमन खुद खोल सकते हन समूह बना के खोल सकते हन एकर माध्यम से जो हमन ला सरकार सब्सिडी भी देहल मतलब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है कि किसान मन ला खर्चा करके पूरा बनाना है इनमें सब्सिडी निर्माण में भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई कर भी और जो चीज कर हमन मूल्य संवर्धन करना चाहती उकर जो आयात निर्यात उकर बाजारीकरण सब संबंध में हमन के मदद मिले।
1: हमन देखब ने भी हमार आकाशवाणी में कई ठे ऐसा संगठन मनाए रहीन जिला हमन किसान उत्पादक संगठन कहब जेमन आसपास जैसे बैकुंठपुर कर जन आए रहीन ओमन कितना सारा गांव कर आदमी मन ला किसान मन ला जोड़ के और इतना बढ़िया किसान उत्पादक संगठन कर माध्यम से अपन फसल कर प्रसंस्करण करता है वाला पैकेजिंग करता है और दूर पूरा विदेश तक बेचता है और कितना बढ़िया लाभ
0: भोलू भैया और जो जिकर बात करती ओकर पास हमन तो गए रहे वो जीराफुल चावल ला बढ़िया पैक करे साफ सुथरा करके ओकर सब किसान मन है बहुत किसान है 1000-1500 किसान कई ठो गांव ला जोड़ी ने और जीरा फूल चावल ला बढ़िया सफाई करके वो पैक बना करके ओमन भेजते हैं
1: जहां जेकर
0: प्रधानमंत्री जी भी जेकर चर्चा करे मन की बात में
1: कितना बढ़िया अगर हम आज चाहिए तो बढ़िया संगठन बनाए के अगर अकेले नहीं सकती तो किसान उत्पादक संगठन बना सकती स्व सहायता समूह कर माध्यम से काम कर सकती। हमन जब कोई काम समूह कर माध्यम से करते हैं तो सरकार विशेष सब्सिडी भी देते और रास्ता बताते प्रशिक्षण भी देते।
0: तो योजना का जो प्रमुख घटक है जिकर बारे में हमन बात कर ली थी मेगा फूड पार्क हमन देखते आजकल खुले एकीकृत कोल्ड चेन या जिला कथे वैल्यू एडिशन कथे मूल्य संवर्धन कथे खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता कर सृजन चाहे विस्तार कर सकते हैं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर बना सकते हैं। एकर अलावा जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना कर निर्माण भी होल तो संस्थागत रूप से एकर विकास भी होते है मानव संसाधन और संस्थागत विकास एकर अंतर्गत प्रमुख घटक भी है। तो किसान मन एकर लाभ ले सकते हैं और जो उत्पादन उनके पास है तो ओकर बढ़िया बाजार में ओला स्थापित भी कर सकते हैं प्रसिद्ध भी कर सकते हैं। कई ठो महिला समूह वाला मन यहाँ काम करते हैं मशरूम कर खेती करते हैं
1: अरे भैया अचार बनाए वाला इतना बढ़िया जब काम करता है जब हमारे सिलफिली और जीरमा कर आस पास का स्व सहायता समूह है भैया में मन कर जो अचार का जो सप्लाई है मन कहा बहुत गजब के सप्लाई है बहुत बढ़िया लाभ का
0: और बढ़िया ऐसा लगेल भोलू भैया कि घर कर बनल है। तो महिला मन बनाते हैं बढ़िया घर कर सब सोच समझ के बनाते हैं तो ये सब कर फायदा मिलेल और सरकारी मदद में पर्याप्त रूप से मिलेल तो ओकर बारे में हमन ला विचार करना चाहिए। एक और बड़ा गजब कर विषय हमन आज चुने रहन भोलू भैया ये है बदलता फैशन बढ़ता कचरा टिकाऊ जीवन शैली कर जरूरत का समझती राउर
1: भाई हमन देखब नहीं तो आज जो फैशन का समय चलता है हमन देखब हर जगह फैशन चलता है
0: फैशन चलता
1: तो खाली फैशन पहनावा में बस नहीं है बाकी हमन देखब तो खाए पिए का तरीका नवा नवा तरीका नवा नवा कपड़ा हो गई, चाहे हमन देखब तो और भी जो जो दैनिक उपयोग कर जो चीज़ है उसमें भी बहुत नवापन आएगी सर, बहुत

0: आधा दिन तक हमन पुराना सामान कर उपयोग ला नहीं करत हन। हमन देखब तो लगातार नवा नवा कपड़ा पहनथन, कुछ दिन के बाद ओला पुराना मान लेथन, फिर ओके फेंक देथन कहीं जग। तो हमन देखब तो कई प्रकार का जो कपड़ा है ओमन से भी कचरा आजकल उत्पन्न होता है भाई। कपड़ा ला ऐसे फेंके से ओकर पुनर्चक्रण तो हो ही नहीं सकता है। एकर माध्यम से भी हमन देखब तो भाई लगातार कचरा कर सम जो मात्रा है बढ़ता है। बाकी हमन देखब तो आज जरूरत है कि हर कचरा कर पुनर्चक्रण हो, और यही दिशा में मन देखब तो फास्ट फैशन कर कारण अगर हम बात करब तो पानी होगी, ऊर्जा होगी, प्राकृतिक संसाधन कर अत्यधिक दोहन भी करना पड़ता है। कपड़ा निर्माण में होए वाला उपयोग जो रसायन है वो माटी जल और उसकर जो भी स्रोत हैं वो मतलब भी प्रभावित करते हैं। संगे संग हम देखब तो वस्त्र उद्योग में बहुत ज्यादा कार्बन भी निकलते जेकर से जलवायु कर भाई प्रदूषण भी होते।
1: एला कई बार हमन समझथन बोलो भैया कि जलाए देह से कचरा कर निपटार हो जाए, ऐसा नहीं होयल। आजकल जो कपड़ा जैसे राउर जो बात करें सिंथेटिक जो कपड़ा है जिला पॉलिस्टर चाहे नायलोन कहते हैं वो आसानी से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में लंबे समय तक वो बने रहे, प्रदूषित भी करे। हमन अगर जलाए भी दहन तो ओकर धुआं से कितना नुकसान पहुंचे। एकर अलावा जो मैं कहत रहन बोलू भैया जो नया फैशन में आजकल जैसे हमन मोबाइल खरीदथन, जरूरत से ज्यादा भी मोबाइल ले लेथन, बार बार बदलथन, तो पुराना मोबाइल कर कचरा होयल,
0: बहुत इलेक्ट्रॉनिक जला कचरा,
1: इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा आजकल बहुत बड़ा समस्या है। तो ओकर से निपटे पर भी हमनला विचार मंथन तो करना पड़े।
0: हम देखब नहीं भैया तो आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ जब ज्यादा मात्रा में कचरा निकलते वो जब कचरा मैनेजमेंट कर बहुत सारा कंपनी आ गई से फैक्ट्री लग गई से ओमन ई कचरा कर वेस्ट ला ऐसा निपटान करते हैं कि भाई ओकर से प्रदूषण भी मत हो और ओकर निपटान भी हो जाए। यही कसम जैसे कपड़ा कर बात करते रहें परसु भैया तो भाई ओला दान कर सकत हैं, गुणवत्ता पूर्ण जो है कपड़ा चाहे बढ़िया लंबा समय तक चले वाला ला चुनना चाहिए, पुनः उपयोग हो जाए ऐसा करना चाहिए, दान कर सकते हैं, रिसाइकल बर दे सकते हैं, स्थानीय पर्यावरण अनुकूल उत्पाद कर प्राथमिकता हम दे ऐसा भी कर सकते हैं।
1: तो सबसे बढ़िया तो यही है कि कम खरीदें, जरूरत पर खरीदें, बढ़िया चीज खरीदें, और जैसे राउर कहें दान भी दे सकते हैं। और एकर अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है ओकर बारे में हमन ला सचेत रहना पड़ी। जरूरत से ज्यादा अगर हमन इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खरीद तो पुराना सामान ला फेंकना पड़ी, इते उते घर के पीछे हमन बीक देथन तो ओकर से कई प्रकार का रासायनिक किरण निकलते और माटी भी खराब होयल, आसपास के जानवर मन ला भी ओला खाए देते हैं कभी कभी अनजाने में, बच्चा मन खेल लेते हैं ओला आग ही बार लेते हैं, कई चीज का एकर से नुकसान होयल। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा फैशन में हमन ले भी लेथन तो एकर बारे में हमन ला सावधानी रखना चाहिए। रिसाइकिल के बारे में जैसे राहुल कहें पुनर्चक्रीकरण के बारे में हमन ला सोचना चाहिए। तो मैं कहते हैं ठीक बेरा होते हैं हमारे प्रायोजित कार्यक्रम कर और जरूरी कार्यक्रम है एक हमारे इंतजार भी करते रहें। तो सुनत ही हमारे कार्यक्रम है किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मो सुनोइया भैया बहनी मन कर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और आज के दिन भोलू भैया,
1: हाँ भैया,
0: ये कार्यक्रम के अंतर्गत हमन प्रसारित करत हन सजीव कार्यक्रम जिला कहते हैं हलो किसान वाणी। तो ठीक हमन बैठे हन और हमर साथ में आज हलो किसान वाणी कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में आई हैं डॉक्टर विवेक कुमार सांडिल, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं आनुवंशिकी और पादप प्रजनन विज्ञान इनका विषय है और यहीं पर कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत करती
2: हैं। धन्यवाद।
0: और बहुत नज़दीक से राउर आयन और राउर से बात भी होत रही कि राउर का जो विषय है आनुवंशिकी और पादप प्रजनन तो एला भी समझा। और एकर अलावा जो भोलू भैया विषय है आजकल जो हमर समसमयिक अब खेती बाड़ी शुरू हुई और शुरू हो चुकी से खरीफ में हमन धान के बारे में बातचीत करब डॉक्टर साहब और अरहर के बारे में हमन बातचीत करब और एकर अलावा फोन मन भी आही तो ओला भी झोंकब। लेकिन सबसे पहले हम अल्लाह समझाई कि अभी धान कर फसल कर का स्थिति है और जो अभी बरखा होत है दो तीन दिन से बढ़िया बरखा होत है हम अल्लाह तो लगाता है ओकर बारे में राउर की का विचार है।
2: जी बहुत ही अच्छी बात है कि अभी वर्षा हो रही है क्योंकि अभी दो चार दिन पहले लग रहा था कि बारिश नहीं होगा लेकिन अभी बारिश बहुत अच्छा हो रहा है तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो समय पर

0: अपना धान का खेती समय पे कर सकते हैं। तो अभी कुछ किसान तो अभी नर्सरी लगा रहे होंगे धान की, और कुछ किसान जो पहले ही नर्सरी तैयार किए हैं उनके लिए रोपा का बहुत ही अच्छा समय आया हुआ है। तो किसान भाई अभी जो रोपा तैयार कर चुके हैं वो रोपा जरूर लगाना स्टार्ट कर दें, और मैं चाहूँगा कि बीज उपचार करके रोपा लगाएं। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्नत किस्मों का चयन करें किसान भाई। उन्नत किस्मों का चयन करने के बाद वो खेत की तैयारी बहुत सही से करें, और बीज का चयन, उत्तम बीज का चयन करें, जैसे सर्टिफाइड बीज का चयन करना बहुत अति आवश्यक है। और बीजों का चयन करने के बाद उनका उपचार बहुत ही आवश्यक है। तो बीज उपचार के लिए किसान भाई 17% नमक घोल तैयार करके उपचार कर सकते हैं।
1: 17% तक,
0: जैसे
1: का
0: मान
1: मतलब?
0: लीजिए

0: चयन उत्तम बीज का चयन करें, जैसे सर्टिफाइड बीज का चयन करना बहुत अति आवश्यक है। और बीजों का चयन करने के बाद उनका उपचार बहुत ही आवश्यक है। तो बीज उपचार के लिए किसान भाई 17% नमक घोल तैयार करके उपचार कर सकते हैं।
1: 17% तक,
0: जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी है तो हमको 1.7 किलोग्राम नमक उसमें मिला के
1: घोल,
0: हाँ घोल तैयार करके हमको सही बीज का चयन करना है। सबसे पहले सही बीज चयन करने के लिए 10 लीटर पानी में 17% नमक घोल तैयार करना है। उसके बाद उसमें हमको जो भी बीज हम चयन किए रहेंगे उसको उसमें डालना है, और जो भी खराब बीज होगा जैसे खकरा बदरा होगा वो ऊपर तैरने लगेगा।
1: अच्छा।
0: और उसको छान के हमको हटा देना है। उसके बाद फिर जो भी शुद्ध बीज बचेगा वो नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद उसको निकाल के 3 से 4 पानी अच्छे से साफ पानी से धोना है। उसके बाद हमको बीज उपचार करना है उसमें कोई भी फंजीसाइड से, बाविस्टीन या थायराम से। इसके बाद एक किसी छायादार स्थान में रख के इसके बाद ही हम नर्सरी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जब 20 से 25 दिन का नर्सरी तैयार हो जाएगा तब हम रोपा के लिए उसको लगा सकते हैं। 2 से 3 पौधे हैं उसको एक साथ लगाना चाहिए, और 20 सेंटीमीटर कतार से कतार और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद उसमें खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए हमको NPK 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास देना चाहिए। नाइट्रोजन को 2 भागों में देना चाहिए, पहले तो रोपा के समय में 1 भाग दे देना चाहिए, बचा हुआ 2 भाग 35 से 40 दिन में, और फिर तीसरा भाग 65 से 70 दिन के बीच में देना चाहिए। इसके बाद हमको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले प्री एमरजेंस के रूप में 0 से 3 दिन के बीच में हमको पाइजीरो सल्फ्यूरान कोई भी चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती के लिए छिड़काव कर सकते हैं। और पोस्ट इमरजेंस के रूप में जैसे धान 20 से 25 दिन जब हो जाए तब बिस्पायरी बेक सोडियम का उपयोग करना चाहिए, ये भी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों का प्रबंधन करता है। मुख्य रूप से सिंचाई 4 बार आवश्यकता पड़ता है सिंचाई का धान में, पहला कन से निकलते टाइम, दूसरा गाब के समय, तीसरा फूल आते समय, और चौथा दूध बनते समय। तो हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर मुख्य रूप से अगर 2 बार अगर हमको सिंचाई करना है तो फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज में करना चाहिए, और हमें कीटों का प्रबंधन करना चाहिए जिसमें तना छेदक लगता है उसके प्रबंधन के लिए हमको कटाप हाइड्रोक्लोराइड छिड़काव करना चाहिए, और रोग में जैसे झुलसा रोग लगता है तो उसके लिए नाटीओ या ट्राईसाइक्लाजोल का प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब इतना बढ़िया राउर पूरा विस्तार से बताएं, तो लगाए कर कौन कौन सा तरीका है, जैसे अभी हम जो
0: लगाने का 4 तरीका होता है, पहला सीधी बुआई, दूसरा छिड़कावा विधि, तीसरा लेही विधि और चौथा रोपा विधि।
1: अच्छा,
0: तो पहला जो सीधी बुआई विधि है वो लाइन से हमको लगाना चाहिए।
2: एक टन फोन आता है किसान भैया बहनी का। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ किसान भाई, राउर अपन नाम ला बताइए।
3: सागर।
2: सागर कहाँ जग से बोला थे किसान भैया?
3: रजपुरी कलंदे।
2: अच्छा, तो आज हमर संगे भाई विवेक सांडिल, डॉक्टर विवेक सांडिल जी बैठी ना है, और आज कर विषय है कि खरीफ कर फसल में धान और अरहर कर उत्पादन तकनीक कर बारे में, राउर कर कोई सवाल हो तो बोला पूछ ली।
3: तो रहर के बारे में बताइए,
2: का सवाल है राउर कर रहर के बारे में?
3: रहर में जैसे कौन सा किस्म लगाए से ज्यादा उत्पादन हो?
0: रहर आप

0: छत्तीसगढ़ अरहर 1 और छत्तीसगढ़ अरहर 2 लगा सकते हैं, राजीव लोचन लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन देता है वो, विल्ट के लिए भी रोगरोधी किस्म है, तो आप छत्तीसगढ़ अरहर 1 लगा सकते हैं और छत्तीसगढ़ अरहर 2।
1: कितना दिन का रोही डॉक्टर साहब?
0: ये लगभग 170 से 180 दिन का फसल है।
1: मतलब 5 महीना से ऊपर कर फसल।
0: हाँ, 5 से 6 महीना।
1: अरहर कर तो लंबा 3 महीना पड़े दिन का सीधे, फिर वो ठंड तक सीधे जनवरी तक पहुंच जाए लो। तो बड़ा
2: बढ़िया सागर भाई फोन करे।
1: हाँ, किसान फोन करते हैं, थोड़ा संकोच भी कभी कभी हो जाए तो सवाल, लेकिन सही सवाल पूछते हैं, हमन भी पूछना चाहते रहे बोलो भैया। तो सागर जी ला बहुत बहुत धन्यवाद कर थी। तो डॉक्टर साहब, और जैसे अरहर 1 अरहर 2 राउर बताएं।
0: जी, ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकला हुआ
1: रोगरोधी किस्म भी।
0: जी जी जी।
2: कितना दिन का ये फसल है?
0: 170 से 180
1: दिन।
0: 170 से।
1: तो डॉक्टर साहब, राउर जो बताते रहे ना, बारे में बताइए, जो कौन कौन सा तरीका से हमने
0: जी
1: धान
0: लगाया। बताया 4 तरीके से धान को। पहला लाइन विधि मैंने बताया, उसमें या तो सीड ड्रिल से लगा सकते हैं, उसमें बीज लगभग 40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। और दूसरा है छिड़काव विधि। अक्सर किसान छिड़काव विधि से ही सूखा बोनी करते हैं। जब
1: एक फोन और आई से डॉक्टर साहब बात कर लेती।
0: जी
1: हेलो, हेलो किसान वाणी।
3: हाँ सर, मैं ग्राम तोरगा उदयपुर ले बोला था, सतीश राम।
1: सतीश जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है, अपन सवाल बताइए सतीश जी।
3: सर, मैं ये कह रहे हैं कि जैसे अभी तो हम हाइब्रिड धान लगाथन, और मैं कहा और थे कि भाई हाइब्रिड धान तो महंगा बेचते, तो एक बराबर कोनो मतलब ऐसा धान जो कृषि विज्ञान केंद्र है ओकर तरफ से नहीं विकसित कर गई से क्या?
0: जी, आपको विक्रम TCR करके एक वैरायटी है, वो आप लगाइए, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, लगभग 50 से 55 क्विंटल आपको उपज देगी।
1: अच्छा।
0: तो आप विक्रम TCR आप लगाइए।
1: 50 से 55
0: जी दे जी जी।
1: और एक अलावा और कुछ भी किस्म के डॉक्टर साहब?
0: और तो अभी यही आया है जो अच्छी उपज के लिए अभी।
1: भोलू भैया एक
0: जी, 120 से 125 दिन का ये फसल।
1: और का खासियत है डॉक्टर साहब में?
0: जी, ये कम पानी चाहने वाला फसल है,
2: माने अभी कर मध्यम अवधि समय है वही हिसाब से, तो बढ़िया फसल
0: जी, मध्यम अवधि वाली किस्म है।
2: और एक परिणाम कहीं जगह जैसे लगाए के पहले टेस्ट करते कि कितना उत्पादन हो ऐसे करके?
0: जी जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ये लगाया गया था लास्ट ईयर, तो काफी अच्छा उत्पादन रहा।
2: और किसान के फोन आते भैया। हेलो, हाँ किसान भैया, राहुल अपन नाम ला बताई।
4: राम राम भैया।
2: राम राम भैया, कहाँ जग से बोला थी और कौन बोला थी, अपन नाम ला बताई।
4: प्रजापति बोल रहे हैं, बिट्टी चलाते।
2: अच्छा राहुल, अपन सवाल ला बताई, आज कर विषय है कि
1: का नाम कहीं ना,
2: पूजन प्रजापति।
1: अच्छा
2: भाई, आज हमारे जग डॉक्टर विवेक सांड
4: भैया में तरह कर रहे हैं।
2: अच्छा हाँ बोली, हाँ बोली बोली, अपन सवाल ला बताई।
4: थरहा कर रहे भैया वो ज्ञानित में।
2: थरहा करे रहा कहाँ जग?
4: ये बीची कला में।
2: हाँ,
4: बीज हर निकली से नहीं।
2: अच्छा, अंकुरित नहीं हुई।
4: अंकुरित नहीं हुई।
2: हाँ,
4: उनमें निराई गुआई तो मैं कर रहे हैं, का गलती मुर हो इसकी, नहीं जानी तो और नहीं निकली सर।
2: डॉक्टर साहब बताइए ओकर जवाब ला।
0: जी आप, मुझे लगता है कि आप उन्नत बीज का चयन नहीं किया था आपने, या हो सकता है बीज उपचार आपने सही तरीके से नहीं किया होगा, इस वजह से बीज उगा नहीं।
1: ये तो मतलब मोला नहीं लगल कि ऐसा होएल डॉक्टर साहब, लेकिन अगर इनके साथ हुई से तो बता थे तो हुई सोई।
2: पुराना बीज भी हो सकता है,
0: पुराना बीज भी हो
2: सकता है, उपयोग करे हो ऐसे भी रहते।
1: बाकी
2: और कोई कारण हो सकता है जेकर कारण भाई बीज हर अंकुरित नहीं हुई?
0: और तो मुझे लगता है कि पुराना बीज हो सकता है, या
1: पैकेट खुला रही सोई। हाँ। या कोई ना कोई कारण रही सोई।
2: हमारे जो क्षेत्र है डॉक्टर साहब, एक धान कर फसल तो बढ़िया से लेते हैं, सबसे प्रमुख समस्या जो ज्यादातर किसान मन के आते ओकर निदान का है और समस्या का है, दोनों बात ला बताए दी।
0: जी समस्या तो सही समय का चयन करें। जैसे अभी मान लीजिए बारिश नहीं हो रहा था, तो ज्यादातर किसान सूखा बो रहे थे, तो बहुत सारे किसानों का उपज भी कम हो जाता है उससे, रोपा विधि से।

0: मोस्टली ज़्यादातर अच्छा उपज ले पाता है किसान, तो रोपा के लिए सही समय पे उनको उन्नत किस्म का सबसे पहले तो चयन करना चाहिए, इसके बाद ही रोपाई करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जो राउर चर्चा करत रहन अलग अलग तकनीक के बारे में, मोला
0: जी
1: जल्दी से बता देते हैं।
0: जी जी मैं बता रहा था छिड़काव विधि, उसमें किसान 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगता है, जिसको किसान छिटक के बोता है। तीसरा है लेही विधि, जिसमें मान लीजिए अभी जैसे जिस हिसाब से बारिश हो रहा है, अगर बारिश ज़्यादा मात्रा में हो गया, बतर नहीं मिल रहा है, तब जाके वो लेही किसान तैयार करता है और उसको डायरेक्ट अंकुरण करके छिटकाव विधि से बो देता है
1: अच्छा।
0: जी। और चौथा है रोपा विधि, जिसमें किसान पहले नर्सरी तैयार करता है और उसके बाद 20 से 25 दिन बाद उसका रोपाई करता है। उसमें वही पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे लगाना चाहिए
1: डॉक्टर
0: जी।
1: साहब, कुछ और बातचीत करब, एक संदेश वाला सुन लेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भाई बढ़िया संदेश ला तो सुनिन परसु भैया। बाकी डॉक्टर साहब, भाई हमारे यहाँ धान कर बात चलता है, हमारे सरगुजा संभाग में धान में लगे वाला प्रमुख रोग का है और का लक्षण?
7: एक फोन आई से भूलू भैया,
6: हाँ एक बात ले लो,
7: उकर बाद में सवाल ले वो। हेलो
8: हेलो, नमस्ते भैया।
7: नमस्कार, राउर के फोन आई बड़ा अच्छा लगी से, एक बार नाम बता देते जी। हाँ अनूपपुर से, तो राउर के फोन कटा थे, कहीं नेटवर्क वाला जगह में जाई तो बड़ा बढ़िया बात हो पातीस। जय मंत्री केवट बोलत हैं, अनूपपुर से बात कर रहे थे। हाँ जी जी,
8: आवाज आई?
7: अब आत है जी।
8: हम लोग बतर नहीं पाए हैं, जैसा उन्नत बीज तो लाए हैं लेकिन अधिक मात्रा में थोड़ा सा लिए
7: हैं। अच्छा,
8: उसको आज मचान पूरा हो गया, कल हम अंकुरित बीज तो डालेंगे तो उसमें खरपतवार नाशक दवा लाई में।
7: अच्छा, खरपतवार दवाई के नाम जानना है?
8: नाम नहीं है,
7: हाँ?
8: तो डालते हैं उस लाई में।
7: अच्छा डॉक्टर साहब, कटत है इनका आवाज, वो लाइन में डाल सकते हैं अभी कैसे डालना?
6: का दवाई ला पूछे थे,
7: पूछे थे। अनूपपुर में बढ़िया पानी नहीं गिरा थे का? कट गई फोन भी।
6: डॉक्टर साहब, जैसे हम धान के बारे में तो भाई बात करते ही
7: जी, तो इनका जवाब तो दे देते हैं डॉक्टर साहब,
6: तो बताए दें
7: जी
9: जी जी। वो
7: फिर से एक बार पूछ लेते, हो सकता है बढ़िया बात हो जाए। हेलो जी,
10: से बोल रही हूँ, जयंत केवल
7: जी।
10: मैं बोली कि हम लोग बतर नहीं मिला ना, थरहा रख पाए तो लई मचान किए हैं और कल बीज डालना है लई।
7: अच्छा,
10: खेत में।
7: अच्छा,
10: हाँ तो उसमें हम खरपतवार दवा का मतलब डाल सकते हैं दवा को मचान में?
9: हाँ डाल सकते हैं, उसको तीन दिन तक आप डाल सकते हैं, जीरो से तीन जिस दिन लगाए हैं उस दिन से लेके तीसरे दिन तक आप डाल सकते हैं जी।
10: तो और थोड़ा सा ये बताइए, जैसे वो बीज डालेंगे, संशोधित बीज लाए हैं तो उसको उपचार भी करना पड़ता है क्या?
9: जी आप कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं।
10: जैसे हम उसको पानी में भिगोए ना तो उसमें पीला पीला रंग छूटा तो हमें लगा कि वो पहले से उपचारित रहा होगा तो वही कलर छूट गया, ऐसे लगा मुझे।
9: नहीं आप लोग कर सकते हैं, कोई भी बीज हो।

0: हाइब्रिड हो या
1: लोकल
0: बीज हो, आप उपचार कर सकते हैं। उपचार करके आप लगा सकते
1: कैसे
0: हैं।
1: कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
0: उपचार करने के लिए कोई भी फंजीसाइड से आप उसका उपचार कर सकते हैं,
1: फफूंदनाशी से।
0: फफूंदनाशी
2: जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फोन करें।
2: धन्यवाद
1: जी। बोलो भैया, और कुछ पूछते रहे।
3: सवाल यही रहे कि भाई धान कर फसल में हमारे सरगुजा संभाग में ज़्यादातर कौन सा रोग देखे पर दिखते और उनका लक्षण कहाँ है?
0: ज़्यादातर तो तनाछेदक लगता है, तनाछेदक। उसमें क्या होता है कि बालियाँ सूख जाती हैं और नीचे तनाछेदक का जो भी कीड़ा रहता है वो नीचे रहता है, जो तना को काट देता है और वो ऊपर की बाली सूख जाती है।
1: डॉक्टर साहब, एक फ़ोन और आई से मुला लगा थे, बात कर ली थी। हेलो
4: हेलो,
1: हाँ हेलो, किसानवानी राहुल के नाम बताइए।
4: हेलो सर, मेरा नाम आकृति है और मेरा ये सवाल है कि कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को क्या लाभ मिलता है और उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती है?
1: ये हमारे विषय से इतर का सवाल है, लेकिन सवाल तो बढ़िया है डॉक्टर साहब। आकृति हमला बहुत बढ़िया लगी। राहुल कहाँ से बात कर रही थी?
4: अंबिकापुर से
1: शहर से सवाल है डॉक्टर साहब।
0: जी जी, कृषि विज्ञान केंद्र में आप लोग को सभी प्रकार का, मेन तो वहाँ समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आधारित है, जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, बतख पालन, ये सब किया जाता है। ट्रेनिंग के लिए जैसे मशरूम हो गया, मशरूम इकाई है वहाँ, और मुर्गी पालन है, बटेर पालन है, केचुआ खाद है, ये सारे का ट्रेनिंग अपने यहाँ होते रहता है। तो आप लोग जब भी ट्रेनिंग हो आप लोग आके ट्रेनिंग ले सकते हैं।
1: ये किसान जा सकते,
0: हाँ, किसान भी जा सकते, कोई भी जा सकते हैं।
1: अच्छा
0: जी जी। और जैसे हमारे यहाँ डेमोंस्ट्रेशन के लिए अभी धान लग रहा है, तो किसान आके वहाँ देख सकते हैं कि कैसे धान लगाया जाता है।
1: अच्छा।
0: वहाँ से देख के सीख के वो घर पे अपने जहाँ लगाते हैं वहाँ लगा सकते हैं।
1: तो बड़ा बढ़िया सवाल रही इससे बोलो भैया। आकृति जिला बहुत बहुत धन्यवाद करथन, और मुझे लगा था कम उम्र के पढ़वैया लड़की रहीस और बढ़िया पूछी सवाल, तो बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी। और हमारे वही सवाल रही धान के बारे में, राहुल बताते रहे ओकर बाद में थोड़ा सा अरहर के बारे में जल्दी से डॉक्टर साहब, बोए कर तकनीक और कैसे कैसे हमन ओकर तीहा कर सकते हैं ओकर बारे में जरूर बताइए।
0: जी, अरहर जैसे कि दलहनी फसल है, सभी दलहनी फसल में एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, उनके जड़ों में एक गांठे पाया जाता है सभी दलहनी फसलों में। तो उनके जड़ों में जो गांठे पाया जाता है राइजोबियम के कारण पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन होता है वहाँ से वो ला के जड़ों में स्टोर करता है, जिससे कि नोड्यूल फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन मिलता है दलहनी फसलों को। तो मुख्य रूप से दलहनी फसल लगाने के लिए जैसे अरहर के लिए उचित जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए, जहाँ पानी इकट्ठा ना हो। और जैसे धान के मेढ़ों में भी अरहर लगाया जा सकता है, और इसके लिए
1: धान की मेड़ में लगा सकता
0: जी जी लगा सकते हैं। जैसे इसके लिए उन्नत किस्म है सीजी अरहर 2, सीजी अरहर 1, राजीव लोचन, ये सारी उन्नत किस्मों को चयन करके किसान भाई लगा सकते हैं।
1: अरहर में उकठा रोग पकड़े डॉक्टर साहब, पूरा का पूरा पौधा खत्म भी हो जाए एकदम।
0: जी जी,
1: तो ओकर का कारण है? और हमन तो कई बार ये सवाल पूछ थन ओकर बारे में, एकर कोई उपाय राहुल के पास है?
0: इसके लिए हमको बीज उपचार करना बहुत अति आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा से हमको उसका बीज उपचार करना चाहिए, वही 6-8 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचार कर सकते हैं, जिससे उकठा रोग नियंत्रण हो सकता है।
3: भाई बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब से मिला था परसों भैया। अरहर कर बारे में जब हमन भाई लगाए कर बारे में कथन, तो ये जग अरहर में भी होए वाला प्रमुख रोग कौन सा है और लक्षण कहाँ है?
0: उकठा रोग ही है,
3: उकर अलावा कोई रोग नहीं लगे?
0: उसके अलावा तना अंगमारी होता है एक ठो,
3: उकर का लक्षण है?
0: वो झुलस जाता है, जैसे हरा दिखेगा लेकिन वो मुरझा जाता है।
3: अच्छा
0: जी जी, उसके उपचार के लिए मेटाएक्सिल प्लस मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए।

0: डॉक्टर साहब, अरहर उत्पादन में किसान मन बढ़िया रुझान दिखाते हैं, राउर लगा लगे सरगुजा में, काहे कि सरकार भी दलहन तिलहन उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा किसान मन जुड़े ओकर बर योजना भी चलाते हैं
1: जी।
0: तो कैसे एक बारे में का समस्या रहे किसान मन के पास?
2: मैंने अरहर की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं खेती में,
0: नहीं ज़्यादा किसान खेती बाड़ी तो बढ़िया करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पूछा था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मन रुझान दिखेल रहा बोला।
1: हाँ, अभी इस वर्ष तो अभी लगा रहे हैं, हमारे यहाँ से भी कुछ योजनाएं आए हैं जिसमें किसान काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और अरहर लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ से जैसे सीजी अरहर 1, सीजी अरहर 2 ये सब हम किसानों को दिए हैं जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो किसान अभी जागरूक हो रहे हैं तो दलहनी फसल की ओर जा रहे हैं।
0: अधिक संख्या में ट्रेनिंग में भी और अलग अलग कार्यक्रम में आत हो थी किसान।
1: जी, जी, जी।
0: एक संदेश वाला सुन लेते फिर बातचीत करो।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं बोलो भैया। और मैं कहता हूं डॉक्टर साहब कि अभी पानी कर कभी कभी कमी रहल और सरकार भी चाहते कि ज़्यादा हमन के पानी मतलब बचत हमन कर सकी। एक अलावा जो आजकल मजदूर मन कम मिलते हैं और अगर किसान के पास संसाधन कम है तो सीधी बिजाई तकनीक के रूप में हमन उपयोग कर सकते हैं, चाहे धान चाहे अरहर में कोई तकनीक है डॉक्टर साहब?
4: हाँ, अरहर में कर सकते हैं क्योंकि दलहनी फसल में वैसे भी पानी बहुत कम लगता है, तो अरहर की बुआई कर सकते हैं।
3: क्या तरीका है लेकर
4: सीधी बुआई के लिए? जैसे इसमें 90 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए, और सीड ड्रिल से भी इसको लगा सकते हैं या लाइन से भी, मतलब किसान भाई।
3: तो कोई फर्क नहीं पड़े उखर से, बढ़िया होकर उत्पादन?
4: हाँ, उपज उत्पादन तो बहुत अच्छा होता है।
3: जी, और मेहनत भी बचल।
4: हाँ,
3: मतलब धान में भी और एमी भी।
4: हाँ, सीड ड्रिल से जैसे लगा देंगे तो वो समय भी बचेगा और लाइन से भी रहेगा।
3: मतलब एक बार थरहा तैयार करिए और एक बार फिर रोपाई करिए, वो खर्चा भी और समय से भी बचेगा।
4: जी जी जी, समय भी बचेगा।
5: अरहर लगाए दें, एक बार खरपतवार नाशी कर कौन सा प्रयोग हम कर सकते हैं, कितना दिन बाद करना चाहिए?
4: एक होता है प्री इमरजेंस, मतलब उगने से पहले। हाँ। कोई भी खरपतवार उगने से पहले आप डालेंगे और एक खरपतवार उगने के बाद, तो प्री इमरजेंस के रूप में पेंडीमेथिलीन का छिड़काव करना चाहिए 0 से 3 दिन के भीतर।
3: सब एक फोन और ऐसे ले ली थी। हेलो किसानवाणी।
6: हेलो किसानवाणी।
3: हाँ, राहुल के बहुत बहुत स्वागत कर रहे थे किसान भाई, अपन नाम ला बता दी।
6: हाँ भैया, राम राम, जय जोहार। मैं ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले मानिक राम प्रजापति बोला था भैया।
3: मानिक जी, बहुत बहुत स्वागत कर रही थी और बहुत बढ़िया लगी इस राउर के फोन आई से। बताइए अपन सवाल
6: भैया। यदि हम तो रेगुलर आप मन के कार्यक्रम सुनते रहन भैया।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
6: अभी भी सुनत भी रहे और फिर फोन लगाए और लग भी।
3: हाँ, बहुत बढ़िया रही। बताइए सवाल। बताइए
6: मोर सवाल रही से भैया, अभी जो खरीफ में जो हमन जो फसल लगाए चाहा थी, जैसे धान तो लगावे कर थन, लेकिन अरहर है, उड़द है, ये भी लगा थन, तो काय नहीं कि हमन लगा थन, ताहले कौन सा मतलब एकर उपाय करब हमन, या उपचारित करब? जैसे छोटा जो रथे ओकर तना है तबले तो ठीक रथे, जैसे 2 फीट 3 फीट के हो जाते ना, तहां ले बीच बीच में मरना चालू हो जाते।
3: अच्छा,
6: ये अरहर का शिकायत है भैया। और उड़द में ए जो पत्ता है पीला पड़ जाते, तो एकर हमन का उपचारित करब, या जैसे पीला पड़ जाते तो कौन सा उपाय करब कि यह झिन होए?

0: सुन लेने डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हमारे समय भी होते जाते हैं, जल्दी से बता देते हैं जी।
1: इसके लिए आप लोग बीज उपचार जरूर करिए, ट्राइकोडर्मा से वही 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आप लोग ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें।
0: और अगर लग चुकी से फिर अभी कुछ उपाय कर सकते हैं?
1: अगर लग गया है तो उसके लिए तो
0: मुश्किल हो जाएगी
1: सर।
2: और प्रभावित फसल उखाड़ के पहले तो फेंक देना चाहिए।
0: यही मैं सवाल पूछे रहे डॉक्टर साहब, उठा कर जो बीमारी रहे वही कस बीमारी है जो ये मानिक जी बता रही हैं, तो और कुछ बोलना चाहती डॉक्टर साहब
1: जी?
0: ठीक है मानिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद करे थी फोन करे
3: भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप मतलब भी ये जानकारी दे।
0: ठीक है, बहुत तो एक साथ हमारे किसान वाणी कार्यक्रम यही खत्म होते हैं भोलू भैया, और डॉक्टर साहब उपस्थित रही आज डॉक्टर विवेक सांडली जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती
1: जी। धन्यवाद,
0: किसान वाणी कार्यक्रम बस यहीं तक।

0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीं
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसान वाणी कार्यक्रम अभी हमन सुनत रहन और अब चौपाल से भी विदा लेकर मेरा हो गई से बोलो भैया।
3: हाँ भैया
2: तो चलत ही फिर आन दिन भेटा तो फिर बातचीत करब। चली
3: राम राम, राम, राम।

किसान भाई सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं और अब पेश है सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम, जो कि आपकी फरमाइशों पर आधारित होता है। सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, आज शबनम की ओर से कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश लेकर मैं हाजिर हूं आपके लिए। आज खास आपकी ही फरमाइशों पर हम शामिल करते हैं आपकी फरमाइशों को। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के इस गीत से। राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से, कामची से नरेश कुमार, अंबिका प्रसाद, केशरवानी, अजय ओगरे, घनश्याम, भूषण तांडी, भारती, दिलीप कुमार, राखी, लालू प्रसाद उइके, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट और चंचल केवट, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार, युवराज साहू, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे और इनके परिवार के सभी सदस्य, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, बेबी जोई और रिंकी गोस्वामी, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति, जानवी, दीक्षांत और इनके परिवार के सभी सदस्य, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू और राहुल साहू, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल, कुशवाहा मंजुलता, राम और श्याम, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और इनके परिवार के सभी सदस्य, डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर नेताम। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से ये

सच्ची भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर अपनों तक पहुंचाना आज भी एक बेहद खूबसूरत कला है, और आपका ये शो यानी इंस्टा फरमाइश उसी कला को संगीत के सतरंगी रंगों से सजाने का एक प्यारा सा प्रयास है, जहां आपके दिल से निकले संदेश और आपकी पसंद के जादुई गीत मिलकर कुछ ऐसे यादगार पल बनाते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो चलिए इसी कला के नाम हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये अगला गीत, जो है फिल्म बेमिसाल से शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का, आवाज़ किशोर कुमार की, और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी की है। ग्राम गोपी खीरिया भांडेर से राहुल पाल, हरिमोहन, अंजना, ज्योति, लक्षु और इनके परिवार के सभी सदस्य, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से टेकराम यदु, विकास यदु, हेमलता यदु, गीतेश्वरी यदु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन, रोजी, पर्ल और विलिस, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल, पुष्पाताई और इनके परिवार के सभी सदस्य, अकोला से सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद और कुमार गौरव मधुरकर, लच्छनपुर बलौदा बाजार से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लव्या, आरव और एस के पप्पी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु, हिमांशु और इनके परिवार के सभी सदस्य, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाभली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक, मोनू, उन्नति, धनशानी, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार और पूरा माखीजा परिवार, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म बेमिसाल से ये गीत।

नाम तो हम हर गीत में आपके ले ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी अंबिकापुर मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 8:17 और 40 सेकेंड हो चुके हैं और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबनम। श्रोताओं, बुज़ुर्गों ने कहा है कि संगीत में वो जादुई ताकत है जो मीलों दूर बैठे दिलों को भी आपस में जोड़ देती है, है ना? सही बात और बिल्कुल पक्की बात। जब इस सुरीले संगीत में अपनों के लिए भेजे गए आपके प्यारे प्यारे संदेश

शामिल हो जाते हैं तो वो गीत सिर्फ गाना नहीं रहता, वो एक इबादत बन जाता है और भी ख़ास बन जाता है। और इंस्टा फरमाइश की इस महफिल में हमारी कोशिश बस यही है कि आपके अनकहे जज्बातों को सुरों की खूबसूरत भाषा में ढाल कर आप तक और आपके अपनों तक पहुंचा सकें। तो आइए सुनते हैं इसी अपनेपन से लबरेज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का ये अगला गीत, जो कि है फिल्म आशा से, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है चनौरा ज़िला फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश से रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथियों की। साथ ही कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल, अफजल मलिक, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती चिड़िया और ओम भैया, ग्राम सेवड़ी ज़िला छतरपुर से बारेलाल प्रजापति, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार, सनावत से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ग्राम ममना ज़िला हमीरपुर बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा और अभय, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णवानंद, सत्यमानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, जिला बागपत से जगमोहन सिंह, प्रजापत मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा, अभिषेक, हर्षित और इनके परिवार के सभी सदस्य, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन और शिव मंदिर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन और पीहू स्वर्णकार। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म आशा से ये गीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

जी हाँ, आशाओं के सावन में आपको भी उम्मीद और आशा तो ज़रूर रहती होगी श्रोताओं कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में आज शामिल हो ही जाएगी, और जिनकी भी फरमाइशें शामिल हो रही हैं उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, रिश्तों की मिठास को बनाए रखने के लिए रोज़ रोज़ महंगे तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस एक छोटा सा प्यारा सा संदेश और रेडियो पर बज रहा एक मनपसंद गीत ही काफ़ी होता है ना? आप ये बताएंगे हमें अपने पत्रों और मेल के माध्यम से कि हमने अभी अभी ये जो कहा ये बात सही है या गलत। आप हमें ये भी बताएंगे अपने पत्रों और मेल के माध्यम से कि आज का इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम आपको कैसा लगा। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और

आज ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबनम। कार्यक्रम में अब हम जिन श्रोताओं की फरमाइश पर अगला गीत प्ले करने वाले हैं, उन श्रोताओं के नाम जल्दी से हम आपको बता देते हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ज़िला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर, मसरत सैयद, निज़ामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, जोड़ा आष्टी, दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सुराज अख्तर, जासमीन, शकीला और हिना रजिया सुल्तान और इनके परिवार के सभी सदस्य। अनारकली बाज़ार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म ब्रह्मचारी से ये गीत, गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

साथियों, इस इनबॉक्स में आने वाली हर एक फरमाइश के पीछे कोई ना कोई खूबसूरत कहानी ज़रूर छुपी होती है। हर एक छोटे से संदेश के पीछे एक सच्ची भावना और जज्बात होते हैं, और रेडियो पर बजने वाला हर गीत किसी न किसी ख़ास याद का साया ज़रूर होता है। और जानते हैं, यही आत्मीयता और आंसुओं मुस्कुराहटों का ताना बाना हमारे इस शो इंस्टा फरमाइश को पूरी दुनिया से सबसे अलग और सबसे ख़ास बनाता है। आप सोच रहे होंगे, आंसुओं का भी जिक्र मैंने किया है। देखिए, आंसू सिर्फ गम की पहचान नहीं होते, कई बार आंसू खुशी के भी होते हैं। और गम के बाद जब आंसू और खुशी के बाद जब आंसू हमारी आंखों से निकलता है, तो उसका एहसास भी कहीं ना कहीं बहुत गहरा होता है। चलिए, बातें और भी होंगी, आपको सुनवाते हैं आप ही की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आरजू से। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है सारसताल सोनगरा ज़िला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैंकरा, खोंदला उदयपुर सरगुजा जीवधन सिंह पैंकरा, सरगुजा से जीवधन सिंह पैंकरा, घुड़नी पैंकरा, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि पैंकरा, ऐश्वर्या और इनके परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना और इनके परिवार के सभी सदस्य, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति, आप हैं ग्राम चरौदा बार नवापारा छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती, आप हैं लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, वाराणसी से अरुण कुमार मालवी और इनके परिवार के सभी सदस्य, बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति संग शिवांश वर्मा, नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल कुमार, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी शर्मा और इनके बहुत सारे साथी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमान आज अंसारी, शबनम बानो, बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातमा नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य,

देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और नेभवानी परिवार के सभी सदस्य, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म आरजू से ये गीत, आवाज है मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश के आखिर में शामिल कर लेते हैं आप सभी की फरमाइश को। तमसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, प्रणीता अनामिका, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद दांगी, झारखंड से सुकरा नायक, मंजू, जलेश्वर, गौरव और परिवार के सभी सदस्य, लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता, रेखा, इशिका, आप हैं नाना खेड़ा मध्य प्रदेश से, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सुहाग से ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं फिल्म सुहाग से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म सुहाग के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज यहीं तक। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं समाचार संध्या। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच

0: सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ

0: यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
5: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का

0: जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
3: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
4: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global South stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Chandip Andashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg of his 3-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand.

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म नील कमल में। साहिर की शब्द रचना थी, संगीत दिया था रवि ने। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे गुलजार का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म घर से ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म घर में। चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए गुलशन बावरा का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया फिल्म खेल खेल में से ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

खेल खेल में इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। मनी टॉक और मंथन ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: 만찬.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोड़ा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
2: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई।
3: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था, और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका अब सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था, और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था, और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एवीडेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और इसमें दो चीजें और हैं, तो एक तो सुविधा बढ़ जाए लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एवीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
2: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है।
3: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें एक ओपीडी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब ये है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊंगा, तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा। तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए

0: परेशानी नहीं होगी, हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है, और दूसरा यह है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है, और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर चिकित्सक जो स्वास्थ्य कर्मी है वो मेरा पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है, इलाज कराया, उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती हैं आभा आईडी के रूप में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आपने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव समझते हैं?
0: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था, इसी तरीके से आभा आईडी जो है, हमारा हेल्थ आईडी जो है, ये एक आमूल परिवर्तन है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमारे साथ साथ रहेगा हमेशा के लिए, और मेरे को बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे में सुना है जिसमें हम अपने जरूरी कागजात संभाल के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये उसी तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य के जरूरी कागज हैं वो सारे मेरा एक तरीके से मेरे लिए लॉकर बन जाता है डिजिटल स्पेस में। मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप आभा आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है, और ये और कुल मिलाकर ये मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं, जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
0: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है, और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके, तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है, और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णता उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से कि ये पूर्णतः गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
1: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
0: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा, आरोग्य सेतु 1.0 जो था

0: वो कोविड के साथ बना था,
1: जी
0: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड के इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवर मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक जो और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है, इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को, परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन की बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में, मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है, और डॉक्टर के पास मैं जाता हूं और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने बता 2 दिन खर्च करके गया हूं अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलोअप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक
1: जी
0: और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं, और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं

परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं और अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ईमेल की गूंज सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार आदाब, आज शबनम की ओर से। श्रोताओं, आपके ढेर सारे मेल हम तक पहुंच चुके हैं, तो सिलसिला शुरू करते हैं आपकी मेल शामिल करने का अपने पहले गीत के लिए। उमरखेड़ से फराह खान, आशिया खान और सरोज खान, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे, राजकोट से प्रेमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश डोकर, वीरमगांव गुजरात से प्रमिला राज सोनी और श्वेता राज सोनी, चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, आप हैं भिलाई से, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, और लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म शहनाई से ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत रवि का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।
1: जुल्फ से

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म शहनाई में। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त शबनम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सीआईडी से। जानिसार अख्तर के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का, आवाज़ें गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की, और फरमाइश आप सभी की। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी, यामिनी और उमा तिवारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और इब्राहिम। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। अकलतरा से दिलीप चंदन, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन और प्रांजल चंदन। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, गिरिडीह झारखंड से। और अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सीआईडी से ये गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में।

सीआईडी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मैं हूँ आज इस कार्यक्रम को आपके लिए ख़ास, आपकी फरमाइशों पर ख़ास लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त शबनम। और हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:12:40। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ और आपाधापी में हम अक्सर उन लोगों से दिल की बात कहना भूल जाते हैं जो हमारे लिए शायद सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। वक्त ही नहीं मिल पाता, हम ये बात तो कह सकते हैं, लेकिन ये बात महज एक बात बनाने वाली बात होती है श्रोताओं। ऐसे में कहीं ना कहीं रेडियो पर गूंजता आपका एक छोटा सा संदेश और एक मनपसंद गीत वो सब कुछ कह जाता है जो आपकी ज़ुबान नहीं कह पाती है। बहरहाल कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आगे बढ़ते हैं और आपकी मेल शामिल करते हैं इस गीत के लिए। फिल्म का नाम है रूठा ना करो, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत सी रामचंद्र का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की और पसंद आप सभी की। गुरमीत सिंह, सीता और आप हैं दिल्ली से, रश्मि झरना, भरत कुमार राजकोट गुजरात से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक अनारकली बाज़ार जगराओं से, ग्राम हिंगड़ी आलोट ज़िला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकर, नाइमा रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकर, संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से और छोटी बलिया करजत मुंबई से, अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम और उमर खेड़ से भाई सिराज, शबाना बेगम और फरदीन खान। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म रूठा ना करो से ये गीत।

आपने ट्यून किया हुआ है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और आज ये कार्यक्रम लेकर आपके लिए मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, आपके साथ शबनम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मदर इंडिया से, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत नौशाद अली का और आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। साथ ही इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साई राजवाड़े, सुमार साई मेर साई श्री भगत, हेमंत कुमार रामखेलावन सिंह पैंकरा, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान मैंडी, सौरव और शाइना शर्मा, अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म मदर इंडिया से ये गीत, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

मदर इंडिया से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए श्री 420 का ये गीत, शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ें मन्नाडे और साथियों की। और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा, महादेव पारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति, जमशेदपुर से रोहन आर्या और इनके परिवार के सभी सदस्य, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आज़ाद और पोपुरानी, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, सोनल, बेबी सिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, आप हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म श्री 420 से ये गीत मन्नाडे और साथियों की आवाज़ों में।

श्री 420 इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन।

फिर के बोल थे संगीत दिया था एस डी बर्मन ने और आवाज़ें रहीं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ बेमितरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार,

वरदा और दामिनी वर्मा। ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, शशिकांता और इनके परिवार के सभी सदस्य। गड़िया मौजे अस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना, पूजा, आरती और सुनीता देवी। पिपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा और लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम के ही दौरान कार्यक्रम का पता भी हम ज़रूर बताते हैं, तो आप गीत सुनते सुनते कागज़ और कलम भी तैयार ज़रूर रखिएगा ताकि हमारे वे श्रोता जो शायद ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं वो हमारा पता नोट कर पाएं और अगली बार हमें अपनी भी फरमाइशें भेज पाएं।

एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी की शब्द रचना थी, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और जैसा कि इस गीत से पहले हमने आपसे कहा था कि कागज़ और कलम तैयार रखकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान ही कार्यक्रम का पता भी हम ज़रूर बताते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारे इस कार्यक्रम का पता। आपको लेना है एक पोस्ट कार्ड और उस पर सबसे पहले लिखना है द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर। इससे पहले आप लिखेंगे कार्यक्रम मन भावन और इसके बाद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन है 497001 और आपको आकाशवाणी अंबिकापुर, ज़िला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पते पर अपना पोस्ट कार्ड, अपनी फरमाइश लिखकर भेज देनी है और सुनते रहना है आकाशवाणी अंबिकापुर। कार्यक्रम मन भावन का अगला गीत है फिल्म हसीना मान जाएगी से। अख्तर रोमानी के शब्दों को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और इस गीत और एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से जो गीत आपने सुना, इन दोनों ही गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम नूरजहां। राजनांदगांव से याकूब, आसमा, यूसुफ, इमराना, इरफान। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। चटौदा सारगांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक।

हसीना मान जाएगी, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर ग्राम परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी और खुमेंद्र मसिया, यहीं से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के आप सभी सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य, खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद, गांव फरासी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म लव इन टोक्यो से ये गीत। हसरत जयपुरी के शब्द हैं, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

छुपाऊं अपना सुलगना किसको दिखाऊं सांस के तूफान कैसे छुपाऊं आंखें क्या क्या देख रही है दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं आजा रे यार।

फिल्म लव इन टोक्यो से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और हम आ पहुँचे हैं मनभावन कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे फिल्म तलाश से ये गीत। मजरू की शब्द रचना है, संगीत SD बर्मन का, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश और पूरा परिवार, पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका वाडोदे, जरूर वडूर से बाबा साहेब वाडोदे और चंद्र प्रभा वाडोदे, बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, भाई कमलकांत सारथी और वीरेंद्र व्रजकांत सारथी, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, डोंगरगांव राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये और राधिका गजभिये। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म तलाश से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म तलाश के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन यहीं

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।